ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता VD सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे

جدا. किताबें अनगिनत हैं और समय कम है. ज्ञान का रहस्य ये है कि जो जरूरी है उसे लें, उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें. ये कथन स्वामी विवेकानंद का है. ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत.

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 6:30 हो रहे हैं। आइए आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इस झरोखा के बाद 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस का भाग 192। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन का भाग 7। कलाकार गायक अनूप जलोटा, प्रस्तुति मनीषा जैन की। और कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भोले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे सुबह 7:00 और 7:30 पर। सुनिए युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सुबह 8:00 होंगे समाचार और 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। और यही कार्यक्रम दोपहर 2:00 पुनः सुना जा सकता है। सुबह 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम के अंतर्गत नए गीत। आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह और रात्रि 9:30। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रंग तरंग कार्यक्रम का समय होगा दिन में 11:00 और दोपहर 12:00। सुनिए हिंदी में समाचार। 12:05 पर होगा यादों की महफिल कार्यक्रम। सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में तय कीजिए हमारे साथ सफर दोपहर 1:00 और आप इस कार्यक्रम में कमेंट्स द्वारा फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। दोपहर 2:15 पर होंगे समाचार और 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 3:00 और दोपहर 4:00। सुनिए सेहतनामा के पिटारा कार्यक्रम के अंतर्गत सेहतनामा। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक। इसी बीच 6:00 आप हिंदी में समाचार भी सुन सकेंगे। शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा यानी कि कार्यक्रमों की रूपरेखा। संध्या रंजन ये कार्यक्रम होगा शाम 6:35 पर। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7:00 और शाम 7:45 पर। स्मृतियों के स्वर में सुनिए सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 1। हवा महल में सुनिए झलकी ये भी खूब रही। लेखन उर्मिला मिश्रा का, निर्देशन चंद्रप्रभा भटनागर का। चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 और 8:45 पर। सुनिए समाचार संध्या। शीर्षक संगीत का कार्यक्रम आपके लिए ये होगा रात्रि 9:00 और 10:00। सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर जयंत प्रात्रिकर का और प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिए कार्यक्रम ढलती जाए रात और रात 11:00 रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। अभी आपने सुना झरोखा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का भाग 192।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

0: गीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, भागम भाग के इस जीवन में संगीत हमारे मन को शांति प्रदान करता है। संगीत में अगर भक्ति की धारा हो तो वो संगीत हमें एक अलौकिक संसार में ले जाता है। भक्ति संगीत पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन, इसकी सातवीं कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनूप जलोटा जी। एक बार फिर से आपका हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार सर।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: स्वागत कर रहे हैं तबले पर आशीष झा जी का और हारमोनियम पर अजय जोगलेकर जी का। अनूप जी, आपने अपने भजनों में बहुत सारे राग रागिनियों का प्रयोग किया है, यूं कहें कि घुमावदार सुरों का प्रयोग किया है। अपने गायन में गमक, मीड, खटका, मुरकी, ये सब कुछ देखने को मिलता है। उसके बावजूद एक आम श्रोता बड़े ध्यान से, तन्मयता से सुन सकता है, समझ लेता है। तो ये जो बारीकी के साथ आप खेल करते हैं, उसके बारे में हमें विस्तृत बताइए।
2: सच तो ये है कि किसी भी गायकी के अंग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन जब वो साधना हो जाए, जब वो सद जाए, तो उसको कुछ इस तरह गाना चाहिए कि लोगों को आसान लगे, लोगों को मुश्किल नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब वो गाने की कोशिश करें तो उनको मुश्किल लगे, सुनने में उन्हें आसान लगे, लेकिन जब कोशिश करें तो उनको लगे नहीं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये निकलेगा गले से। तो हमने वही कोशिश की है कि छोटी छोटी मुर्कियां, छोटी छोटी ताने, उसको ऐसे सहज ढंग से हम ले लेते हैं कि सामने वाले को लगता है तो आसान होगा
1: जी,
2: लेकिन जब उसको करने की कोशिश की जाएगी तो पता लगेगा कि आसान नहीं है, इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारे गुरु ने इस तरह सिखाया हमको। अब जैसे एक भजन है, रंग दे चुनरिया
1: जी,
2: मैंने बहुत साल पहले ये भजन आनंद कुमार जी से सुना था, बहुत अच्छे गायक है वो। तो मैंने फिर उसको अपने ढंग से, उस भजन को थोड़ा सा और बढ़ाया, अपने ढंग से गाता हूँ। तो सुनने में वो भजन बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब गाने लगो तो लगता है कि आसान नहीं है, इसके अंदर जो काम है
1: जी,
2: उसके लिए बरसों लग जाएंगे। रंग

0: संगीत मैंने सीखा और सबसे पहले शास्त्रीय संगीत ही गाना शुरू किया मंच पे। फिर मुझे लगा कि यदि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं तो माध्यम इसी शास्त्रीय को सुगम करना होगा, और वही मैंने किया, उसी को सुगम किया है। है ये शास्त्रीय है लेकिन इसको एक सुगमता दी है, और उस माध्यम से ये ऐसे लोगों तक पहुंच गया जो शास्त्रीय नहीं सुनते थे और उनकी रुचि शास्त्रीय संगीत की ओर बढ़ गई। ये मैंने कोशिश की है
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अनूप जी, फिर से वही वक्त आ गया है जो हमें नहीं पसंद है अनुमति लेने का वक्त आ गया है, तो आज की इस कड़ी से श्रोताओं से अनुमति लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। कल अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तो हमारे श्रोताओं को सुनते रहना है ये श्रृंखला संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

वाह, बहुत सुंदर, एकदम मंत्रमुग्ध होकर हम सुन रहे थे। यहाँ पर एक सवाल जहन में आया है, वो ये कि शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का जैसे भेद यहाँ पर मिट जाता है, आप शास्त्रीय संगीत के साथ साथ किस तरह से सुगम संगीत तैयार करते हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं प्यार की राहें इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे मुकेश ने गाया है। कानू घोष का लिखा ये गीत है और संगीत है प्रेम धवन का।

0: तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म सिमसिम मर्जीना से। प्रेम धवन की रचना थी और एआर कुरैशी ने इसे संगीतबद्ध किया था।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनाते हैं मुबारक बेगम की आवाज में केदार शर्मा का लिखा ये गीत जिसकी लय बनाई है स्नेहल भटकर ने। फिल्म का नाम हमारी याद आएगी।

छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए राही फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। प्रेम धवन के बोल हैं जिस पर सुरों को सजाया गया है अनिल बिस्वास द्वारा।

श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवाएंगे मगर आज सुबह 9:30 बजे आज के फनकार कार्यक्रम में सुनना ना भूलिएगा कलाकार अदाकार फरीदा जलाल को. कार्यक्रम है आज के फनकार और समय 9:30 बजे. और चलिए अब आपको सुनवाते हैं लाडली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में. इस गीत को संगीत से सजाया है अनिल बिस्वास ने.

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 7:30 बज रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। युगल गीतों के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाए जाते हैं ऐसे गीत जो दो गायक कलाकारों द्वारा गाए गए हैं। तो आइए आगाज करते हैं आराधना फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अभी आपने सुना ये अप्रैल फूल फिल्म का गीत। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता। बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।

0: हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जवान मोहब्बत, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों में, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन की धुन।

करमा होगा न किस्मत जगमगाएगी। जरा सी बात का आखिर बनाती हो क्यों अफसाना।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए आनंद बख्शी के बोल है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें फिल्म का नाम मस्ताना

0: इस गीत के साथ ही आज का हम है रही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है. दीजिए इजाजत नेहा करकर देसाई को नमस्कार.
1: FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है. सुबह के 8 बजने वाले हैं. कुछ देर में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5

0: विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
1: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
3: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलू

0: और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्यबल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला गीत आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम प्रेम पर्वत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार।

0: नमस्ते सुप्रभात गुड मॉर्निंग जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र और समय हो गया है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का, जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ। और साथियों, इसके साथ ही आपको रखेंगे अपडेट, लेकिन उससे पहले हो जाए टीम का परिचय जो निर्बाध रूप से आप तक सभी प्रोग्राम्स पहुंचाती है।
1: दोस्तों, आज की नमस्कार की टीम में हमारे साथ ट्रांसमीटर पर हैं पीके सेन और चंद्रा राम पटेल। कंट्रोल रूम से साथ मिल रहा है प्रवीण कुमार का। एचपीटी कंसोल पर साथ दे रही हैं उद्घोषिका नीतू। वहीं एफएम का कंसोल संभाल रही है उद्घोषिका हिना खान। कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजय व्यास की और संयोजन राजेश लामरोड का।
0: और दोस्तों, इसके साथ ही आपके आज के होस्ट हैं मैं हूं मनीषा जोशी बोरा और मेरे साथ हैं
1: और मैं हूं चंद्रकला सुथार।

0: ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे आज का दिन सबको रास आए। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको गाना नया नवेला।
1: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके, सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों, मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं अक्सर मेहनत, कोई भी काम का जो परिणाम होता है, मेहनत का परिणाम होता है, नतीजा होता है, वो तुरंत नहीं मिलता है। ऐसे में धैर्य ही रखना होता है, सही वक्त का इंतज़ार करना होता है, क्योंकि धैर्य रखने से हमें हमारे अंदर हौसले को बनाए रखने की जो हिम्मत होती है वो बनी रहती है, और धैर्य रखने से हमारी सोच में एक गहराई आती है और हमें जल्दबाजी में गलत फैसला लेने से भी बचाती है। क्यों मनीषा?
1: बिल्कुल चंद्रकला जी, और इसी बात पे मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानियाँ जो हमें हमारे मार्ग में बहुत सहायता करती है, हमें जो दादी नानी से सुनने को मिलती है, वो हमारे आप में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास पैदा करती है, हमें सही रास्ता दिखाती है। और ऐसी एक कहानी मुझे भी याद आ रही है, तो क्यों ना शेयर करते हैं हमारे लिसनर्स के साथ में। दोस्तों, इस कहानी का जो शीर्षक है वो है जादुई बीज। एक गाँव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था, लेकिन वो थोड़ा अधीर था। वो चाहता था कि हर काम तुरंत हो जाए। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने मोहन को एक छोटा सा बीज देते हुए कहा कि बेटा, ये जादुई बीज है, और अगर तुम इसकी सच्चे मन से देखभाल करोगे तो यह तुम्हें जीवन में सबसे बड़ा खजाना देगा। बस मोहन की खुशी बढ़ती गई और उसने देखा कि वो बीज ले जाकर उसने अपने आंगन में बो दिया। अगले दिन वो दौड़कर देखने गया कि कल जो बीज मैंने लगाया था उसमें से कुछ निकला कि नहीं। देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था। वो थोड़ा उदास हो गया। तीसरे दिन भी कुछ नहीं उगा तो उसने गुस्से में कहा, ये कैसा जादुई बीज है? तो उसकी दीदी मुस्कुराई और बोली, बेटा, प्रकृति को जल्दी पसंद नहीं है, फल पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। तो मोहन ने अपनी दीदी की बात मानकर रोज बीज को पानी देना शुरू किया। कई दिनों बाद मिट्टी से एक छोटा सा पौधा निकला। धीरे धीरे वो बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ पर मीठे फल आने लगे, तो गांव के लोग उसके फल खाने के लिए आने लगे। एक दिन मोहन को समझ आया कि असली खजाना जो है वो सोना चांदी नहीं, बल्कि धैर्य और मेहनत है। उसने दीदी से कहा कि अब समझ आया कि ये जो जादू था वो बीज में नहीं था, जादू तो मेहनत और इंतज़ार में था। तो दोस्तों, हमें यही सीख मिलती है कि हम धैर्य और लगातार मेहनत से ही अच्छे परिणाम पा सकते हैं। जो व्यक्ति अधीर है वो कभी भी अपने सफलता को पा नहीं पाएगा, क्योंकि कभी वो एक काम छोड़ेगा, दूसरे को पकड़ेगा, और ऐसे में सफलताएं आधी अधूरी रह जाएंगी। सफलता तभी मिलती है जब हम पूरे धैर्य से, पूरे मनोयोग से उसमें जुट जाएं और उसके फल आने का इंतजार करें।
0: बिल्कुल मनीषा, और जब मेहनत का साथ धैर्य का साथ मिल जाता है, मेहनत और धैर्य का जब साथ मिल जाता है, तो

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोस्तों, जीने के इशारे तो तभी मिलेंगे जब हम अपना नज़रिया बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, परिस्थितियाँ भी तब तक नहीं बदलती है जब तक हम खुद को नहीं बदलते, क्योंकि जब हम अपनी सोच और अपना नज़रिया बदलते हैं तो ये दुनिया, ये हालात, सब कुछ अपने आप बदला हुआ नज़र आने लगता है। और कहते भी है ना कि नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदलते हैं, नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदलते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।

0: मनीषा, सुबह सुबह अखबार खोलो तो कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि पढ़कर दिल उदास हो जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर हमारी मरुभूमि के लिए पढ़ने को मिली। वो ये है कि अमूमन हम इंसानों की आबादी बढ़ने की खबरें तो हम सुनते ही हैं, जो चिंता पैदा करती है। लेकिन खबर उन बेजुबानों की है जिनकी रौनक से हमारा मरुस्थल एक बार फिर से आबाद हो रहा है।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल। वन विभाग की साल 2026 की ताज़ा वन्य जीव गणना से एक ऐसी सुखद और चौंकाने वाली तस्वीर उभर कर आई है जो ये साबित करती है कि अगर इंसान और प्रकृति हाथ मिला लें तो मरुभूमि में भी जिंदगी मुस्कुरा सकती है। जब जब मनुष्य ने अपनी धरती, अपनी गोचर भूमि और अपने जल स्रोतों की कद्र की है, प्रकृति ने उसे दोगुनी खूबसूरती लौटाई है। दोस्तों, साल 2026 की वन्य जीव गणना के आंकड़े यही गवाही दे रहे हैं कि जागरूकता और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से हमारे जंगलों में और गांवों में रौनक वापस लौट आई है। विशेषकर राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या में आई इस वृद्धि इस बात का शुभ संकेत है कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक सुरक्षित और सतरंगी पर्यावरण की गवाह बनेगी। दोस्तों, वर्ष 2022 में जहां मोरों की संख्या 2187 थी, वहीं अब बढ़कर 5905 पहुंच गई है। यानी कि हर साल इन 4 सालों में 3718 मोर बढ़ चुके हैं।
0: और आज से 25 साल पहले, मनीषा, देखा जाए तो पहले कायलाना और बड़ा भाकर क्षेत्र में इक्का दुक्का मोर ही दिखाई देते थे, जबकि आज जागरूकता के कारण इस क्षेत्र में 50 से ज्यादा मोर आसानी से नजर आने लगे हैं। देखे तुमने कभी?
1: नहीं अभी, लेकिन कुछ दिनों से मुझे दिखाई ही दे रहे हैं।
0: हाँ, तो ये इसी का ही परिणाम है। और इसी तरह चिंकारा है, कृष्ण मृग है, नील गाय है, सियारों की संख्या है, भेड़िए हैं, मरु लोमड़ी है, इनकी भी संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है।
1: बिल्कुल, नील गाय तो आजकल सड़कों पर देखने को मिल ही जाती है।
0: और यह सचमुच एक शुभ संकेत ही तो है।

0: तो सुनो, बजने वाले हैं, यहाँ हम न्यूज ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
1: नमस्कार, कार्यक्रम जारी रहेगा समाचारों के बाद। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं कुछ देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए गोथेनबर्ग में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रदेश में 260,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के तेवर फिर से तीखे। सीमावर्ती जिलों में आज हीट वेव की संभावना। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में निशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों पक्षों के बीच व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर सहयोग के लिए विचार विमर्श हुआ। यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपीय

0: राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री रहा, जिसे दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन के साथ संबोधित किया। प्रदेश में लोगों को जल संचय और मकानों तथा भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने के लिए जागरूक किया जाएगा, जिससे जल संग्रहण कर बरसात के पानी का अधिकतम उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जल संचय जन भागीदारी 2.0 और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की प्रगति की उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहरों से लेकर गांवों तक लोगों और प्रशासन की इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 25 मई से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के अनुदानित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन और दलहन के तहत ये राशि मंजूर की गई है। योजना के तहत राज्य में 70,000 फसल प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा और किसानों को मूंग, उड़द, सोयाबीन, सरसों, तिल और अरंडी के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कृषि मंत्री ने बताया कि बीज वितरण और फसल प्रदर्शनों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सवाईमाधोपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ 2025 में बड़ी राहत मिली है। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिले के किसानों को अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए करीब 47 करोड़ 33 लाख रुपए की दावा राशि मंजूर की है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक लखपत लाल मीणा ने बताया कि जिले में बेमौसम की तेज बरसात से बाजरा, तिल और उड़द की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद कृषि विभाग और बीमा कंपनियों ने संयुक्त रूप से सर्वे कर किसानों के नुकसान का आकलन किया। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 51,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में ये राशि डीबीटी की जा चुकी है। किसानों ने बताया कि आपदा की स्थिति में ये योजना उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
1: ग्राम पुस्तला का रहने वाला हूं और मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरे 4 एकड़ जमीन का बीमा कराया। उसमें मैंने 2810 रुपये प्रीमियम दिया और 1,12,260 रुपये मुझे बीमा राशि के मिले हैं। मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी अपना बीमा कराएं, समय पर गिरदावरी करें और जो फसल है जिसी का बीमा कराएं। धन्यवाद सर।
2: भाइयों राम राम। मेरा नाम मेहरबान सिंह है, मैं कुश्तला का रहने वाला हूं और मैं 2023 से फसल बीमा करा रहा हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो मेरे इस साल में 5,315 मेरे बीमा के जमा हुए हैं और मेरे को इस साल 1,81,556 रुपये मेरे को बीमा के पास हुए हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कराए, जिससे अपन को फसल खराब हो तो उसका अच्छा मुनाफा मिले, अपने को लाभ हो। इसके बाद
0: पाली जिले में जनजातीय समुदायों के विकास के उद्देश्य से आज से पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि ये अभियान 25 मई तक चलेगा। जिले की दूर दराज की ढाणियों और गांवों में आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से 21 से 23 मई तक जनसुनवाई होगी। वहीं संतृप्ति शिविर और स्वास्थ्य जाँच शिविर भी लगाए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। कल 7 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ, वहीं 8 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा रहा। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पारे में 1 से 3 डिग्री तक का उछाल आया है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और कई क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री

0: की और बढ़ोतरी हो सकती है। सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने और हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहने की आशंका है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में आज से 22 मई के दौरान तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है।
1: पिछले एक सप्ताह से हीट वेव की परिस्थिति है और कहीं कहीं पे नाइट टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर है। विशेष रूप से मई के महीने में जो थार रेगिस्तान क्षेत्र और आसपास का जो पाकिस्तान क्षेत्र है, इसमें जो हवाओं का पैटर्न है, खासकर जो सतह की हवाएं हैं और ऊपरी वातावरण की है, इसमें एक एंटीसाइक्लोनिक चक्रवाती, यूं कह सकते हैं प्रति चक्रवाती तंत्र बनता है और इसी के असर से सरफेस पर हीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल पिछले एक वीक से ये एक टिपिकल हीट वेव का स्पेल जारी है और अभी भी अगले एक सप्ताह 10 दिनों तक ये हीट वेव का स्पेल खासकर डेजर्ट क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थल क्षेत्र है, इसमें जारी रहने की संभावना है।
0: चूरू जिले के मानपुरा में एक खेत में बनी झोपड़ी में आग लगने से दो बालिकाओं की मौत हो गई। वहीं दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना पनियाला के पास कार और ट्रक के बीच टक्कर से हुई। उधर अंबाला हाईवे पर एक कार के बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। आज विश्व संग्रहालय दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में देशी विदेशी सैलानियों और आमजन को निशुल्क प्रवेश मिलेगा। वहीं पर्यटकों का स्वागत पारंपरिक अंदाज में किया जाएगा। संग्रहालय दिवस के अवसर पर पाली में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जैसलमेर में भी थार हेरिटेज म्यूजियम में विरासत संरक्षण पर विचार गोष्ठी रखी गई है। रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज विशेष रेलगाड़ी चलेगी। ये विशेष रेल सेवा एक दिन के लिए संचालित होगी। ये ट्रेन आज सुबह 9:30 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होकर करीब 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। वापसी में दोपहर 2 बजे रामदेवरा से रवाना होकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसका मंडोर, ओसिया और फलौदी सहित सभी निर्धारित रेलवे स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। सवाईमाधोपुर में नई वंदे भारत ट्रेन की गति का परीक्षण पूरा किया गया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रेलगाड़ी को कोटा मंडल के विभिन्न मार्गों पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर परखा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए गोथेनबर्ग में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के तेवर फिर से तीखे। सीमावर्ती जिलों में आज हीट वेव की संभावना। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में निशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: दोस्तों स्वागत है आपका फिर से नमस्कार प्रोग्राम में न्यूज ब्रेक के बाद। दोस्तों हम आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ।

दोस्तों, 1974 में आज ही के दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था और इस मिशन का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जी दोस्तों, 18 मई 1974 की सुबह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर चल रहे फिल्मी गीतों के प्रोग्राम को अचानक ही बीच में रोककर उद्घोषणा हुई कि कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें, और कुछ ही क्षण पश्चात उद्घोषक का स्वर गूंज उठा कि आज सुबह 8:05 पर पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भारत ने एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। दोस्तों, इस परीक्षण से 5 दिन पहले 13 मई को परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष होमी सेठना की देखरेख में भारत के परमाणु वैज्ञानिकों ने परमाणु डिवाइस को असेंबल करना शुरू किया था, और 14 मई की रात डिवाइस को अंग्रेजी अक्षर एल की शक्ल में बने शाफ्ट में पहुंचा दिया गया था। ये था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जो थार मरुस्थल में जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर पोखरण के निकट बुद्ध पूर्णिमा के दिन 18 मई को निर्जन क्षेत्र में किया गया था। शायद इसीलिए पोखरण वन को बुद्ध की मुस्कान कोड नाम दिया गया था, और परीक्षण के लिए पोखरण को इसीलिए चुना गया था क्योंकि यहां से मानव बस्ती बहुत दूर थी। दोस्तों, भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया था, और इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष पोखरण परमाणु दिवस मनाया जाता है, और आज भी है 18 मई, यानी कि आज है पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस। दोस्तों, इसके बाद वर्ष 1998 में और भारत ने 11 मई और 13 मई को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। अचानक ये इन परमाणु परीक्षणों ने अमेरिका, पाकिस्तान सहित कई देशों को अचंभित कर दिया था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की अगुवाई में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया था कि पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इससे पहले 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण वन कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था, और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान और उसकी साख एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरी थी।
1: जी हाँ दोस्तों, इससे पता चलता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्या महत्व है। भारत की परमाणु शक्ति संपन्नता किसी देश को धमकाने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए है, जिसे शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन परमाणु बम बनाकर भारत ने यह जरूर साबित कर दिया कि वह किसी से भी कम नहीं है।

0: दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा बनी रहती हैं। यह यादें भी कई तरह से संजो कर रखी जाती हैं। हमारे पूर्वजों ने अपनी यादों को सुंदर तरीके से संजो कर रखा जिससे कि हम भी उनके बारे में जान सके। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज तो हमारे लिए रख कर गए, उसे नुकसान न पहुँचे इसके लिए कई संग्रहालय बना दिए गए जो हमें अपने पूर्वजों की याद रखने में मदद करते हैं। किताबें, पांडुलिपियाँ, रत्न, चित्र, शिलाचित्र और दूसरे सामानों के रूप में तमाम तरह की वस्तुएं संग्रहालयों में हमारे पूर्वजों की यादों को जिंदा रखे हुए हैं। हर देश की संस्कृति को समझने में कई वस्तुएं विशेष योगदान निभाती हैं जिन्हें संग्रहालयों में सुरक्षित रखा जाता है।
1: और हाँ दोस्तों, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में संग्रहालयों के महत्व को समझाना और लोगों को संस्कृति, इतिहास और विरासत से जोड़ना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इतिहास और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिले, लोगों में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़े और नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ा जाए, शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित भी किया जाए। दोस्तों क्या होता है संग्रहालय? वही होता है जहाँ पर पुरानी वस्तुएं, ऐतिहासिक दस्तावेज, मूर्तियाँ, चित्र और कलाकृतियाँ सुरक्षित रखी जाती हैं और लोगों को दिखाई जाती हैं। ये हमारी संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं और शोध में, वर्तमान में जो बच्चे शोध कर रहे हैं उसमें भी मदद करते हैं।
0: दोस्तों भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आम जनता, छात्रों और शोधार्थियों को विभिन्न संग्रहालयों में उपलब्ध समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देना है। आज के दिन भारत सरकार के सभी संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क कर दिया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साल 2011 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय संग्रहालय और स्मृति निर्धारित किया।
1: जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हमें ये याद दिलाता है कि संग्रहालय केवल पुरानी चीजों का स्थान नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और पहचान की जीवंत झलक है।

0: सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल।

0: हाउस पावटा जोधपुर।
1: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

दोस्तों जब भी पानी का जिक्र होता है तो प्यास से जोड़कर हमेशा देखा जाता है। पानी सिर्फ हमारी प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि यह हमारी सभ्यता की धड़कन भी है। जी हाँ दोस्तों, सदियों से हमारी नदियाँ और नहरें हमारी इस धरती की रगों की तरह बहती आई हैं, जिन्होंने इंसानी बस्तियों को सींचा भी है और उन्हें पाला भी है। लेकिन आज तरक्की की दौड़ में हम अपनी इस लाइफ लाइन्स को भूलते जा रहे हैं। प्लास्टिक का कचरा, फैक्ट्रियों के रसायन और हमारी ही लापरवाही ने आज इन कलकल बहती धाराओं को प्रदूषित कर दिया। जब एक नदी या नहर मैली होती है तो सिर्फ पानी गंदा नहीं होता दोस्तों, बल्कि हमारा आने वाला कल, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य और इस धरती का पूरा इकोसिस्टम बीमार पड़ जाता है। नदियों और नहरों को साफ करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, बल्कि हम सब का एक साझा फर्ज भी है। यह एक आंदोलन है अपनी जड़ों को, अपनी प्रकृति को और अपने खुद को बचाने का, क्योंकि साफ पानी ही साफ और सेहतमंद कल की बुनियाद है दोस्तों। और कहते हैं ना कि इंसान अगर ठान ले तो कुदरत के रंगों को, रूठे हुए रंगों को भी वापस ला सकता है। इसी से जुड़ी हुई एक खास बात हम आपको बताना चाहते हैं। तमिलनाडु के कुडालोर में बंकिम धम नहर की कहानी भी कुछ

0: ऐसी ही है। यह दोस्तों व्यापार और परिवहन की जीवन रेखा कही जाने वाली यह ऐतिहासिक नहर वक्त के थपेड़ों और इंसानी लापरवाही के कारण गंदगी और प्लास्टिक के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। 3 किलोमीटर का हिस्सा जो कभी कलकल बहता था प्लास्टिक के बोझ तले दम तोड़ रहा था, लेकिन इसमें बदलाव की लहर भी आई और यह बदलाव की लहर तब शुरू हुई जब स्थानीय समाज और प्रशासन ने अपनी इस विरासत को बचाने का संकल्प लिया।
1: जी दोस्तों, 600 ग्रामीणों के अटूट श्रमदान और वन विभाग की दूरदर्शी सोच ने मिलकर एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसने न केवल नहर को प्लास्टिक मुक्त किया बल्कि वहां मैंग्रोव के जंगलों की हरियाली भी लौटा दी। और आज इस नहर में पानी का प्रवाह फिर से तेज हुआ है और लौटती हुई मछलियां इस बात का सबूत है कि प्रकृति को सहेजने की एक छोटी सी कोशिश पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नया जीवन दे सकती है। दोस्तों, आज जब हम जलवायु परिवर्तन और जल संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तब कुड्डूलौर का यह सफल मॉडल हमें बताता है कि समाधान सरकार की फाइलों में नहीं बल्कि जन भागीदारी और प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता में छिपा है। लौटती हुई मछलियां और खिलती हरियाली इस बात की गवाह हैं कि अगर हम प्रकृति और उसका सम्मान लौटा दें तो वह हमें सुरक्षा और समृद्धि का वरदान देने में कभी पीछे नहीं हटती।
0: बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद है कि यह छोटी सी लहर देश की दूसरी नदियों और नहरों के लिए भी एक नई सुबह का संदेश बनेगी। और यही थी आज के नमस्कार की खास बात।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जी दोस्तों, अब हम चलते हैं काम की बात की तरफ। अब गर्मी की छुट्टियां होने वाली है, तो सभी माओं का यही रहेगा कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं कि वो उसके आगे के जीवन के लिए, भविष्य के लिए लाभकारी हो। तो इसके लिए हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे जो कि हमारे काम के बात में रहेगा। जी दोस्तों, अभी आजकल वर्तमान में कई तरह के ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोग्राम्स चलते हैं जो बच्चों को सिखाए जाते हैं। आप उन्हें हॉबी क्लासेस में भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक जो मुझे दिमाग में आता है, जो कि बच्चों की पढ़ाई से भी रिलेटेड है, अगर बच्चे 1.5 महीने की छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें वे अगर ऐसा कार्य सीखें जो उनके आगे वापस जब छुट्टियाँ खुलेंगी तो पढ़ाई में भी हेल्प करेगा, तो वो है एक अबेकस उन्हें सिखाना। जो दोस्तों, अबेकस जो है वो एक प्राचीन गणना करने का एक उपकरण है जिसका उपयोग बच्चों को तेज़ और आसान तरीके से गणित सिखाने के लिए किया जाता है। क्या होता है अबेकस? तो यह हम आपको बता दें कि अबेकस एक लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम होता है जिसमें तार और उन पर छोटी छोटी गोल मणियाँ होती हैं, और इन मणियों को ऊपर नीचे या दाएँ बाएँ करके जोड़, घटाव, गुणा और भाग किए जाते हैं। ये कैसे काम करता है? तो इसमें हर तार अलग अलग प्लेस वैल्यू को दर्शाता है और बीट्स को हिलाकर संख्याएं बनाई जाती है। धीरे धीरे बच्चा इसे बिना देखकर मेंटल कैलकुलेशन करने लगता है। जी दोस्तों, ये जो अबेकस हम बच्चों को सिखाते हैं, इसके फायदे ये होते हैं कि इससे जो हमारा बच्चा है वो गणित में तेज हो जाता है। बच्चे जल्दी जोड़ घटाव करना सीख जाते हैं। इससे इनका दिमाग तेज होता है क्योंकि ये ब्रेन को एक्टिव रखता है और मेमोरी को बढ़ाता है। इसके साथ ही उनकी एकाग्रता में भी बढ़ोतर होती है। बच्चा ध्यान लगाकर काम करना सीखता है, और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो बच्चों में एक आत्मविश्वास जागता है। उनके मन से गणित का डर कम हो जाता है, और मानसिक गणना जो वो करता है उससे बच्चे बिना कागज़ या कैलकुलेटर के हिसाब लगाना सीख जाते हैं। तो हुआ ना इंजॉय का इंजॉयमेंट, सीखना लर्निंग, और ऐसी लर्निंग जो उन्हें आगे अपने भविष्य में, अपने दूसरे विषयों में भी उपयोगी साबित होती है। और खास करके मैथ्स जैसा विषय, गणित जैसा विषय जिससे कि बच्चे दूर भागते हैं, डरते हैं, तो ये जो प्रोसेस रहेगा छुट्टियों में बच्चों को अबेकस सिखाने का, इससे वे अपनी गणित भी मजबूत कर लेंगे और एक तरह से उनकी एकाग्रता भी बढ़ेगी।
1: जी हाँ दोस्तों, बच्चा तेजी से सही जवाब देने लगता है और उसका आत्मविश्वास भी इससे बढ़ता है। वह गणित से डरता नहीं है बल्कि उसे पसंद करने लगता है। उसकी रचनात्मक सोच विकसित होती है। अबेकस बच्चों को सिर्फ रटने की बजाय समझकर सोचने की आदत देता है, और इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी है वो भी मजबूत होती है। अबेकस का असर सिर्फ गणित तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, विज्ञान में लॉजिक बेहतर होता है इससे, पढ़ाई में स्पीड बढ़ती है, याद करने की क्षमता भी मजबूत होती है, और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन सामने आता है। दोस्तों, तेज गणना और बेहतर एकाग्रता के कारण बच्चे समय पर पेपर पूरा कर लेते हैं और गलतियां कम करते हैं। मतलब तो यही है कि अबेकस ट्रेनिंग है जो बच्चों के लिए एक पूरा ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यह उन्हें तेज, आत्मविश्वासी और स्मार्ट बनाता है, खासकर गणित में।

दोस्तों आज सोमवार है और सोमवार को सेगमेंट होता है विज्ञान विश्व। आज विज्ञान विश्व में हम बात कर रहे हैं आर्कमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावनता का विज्ञान के बारे में। जी दोस्तों, जब भी हम

0: होती है तो उसके ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है, उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। अगर सरल शब्दों में से समझा जाए तो अगर आप पानी में भरे टब में एक पत्थर डालते हैं तो पत्थर जितना पानी बाहर निकालेगा उस पानी का वजन ही पत्थर पर लगने वाला ऊपर की ओर का धक्का होगा। उत्प्लावक बल वह ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी वस्तु को तरल में तैरने में मदद करता है। और विस्थापित तरल जब किसी चीज़ होती है वो पानी में जाती है तो वह अपनी जगह बनाने के लिए कुछ पानी को हटा देती है और उस हटाए गए पानी का आयतन उस चीज़ के डूबे हुए हिस्से के आयतन के बराबर होता है। और वस्तु कब तैरेगी और कब डूबेगी अगर ये समझना है तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि चीजें हैं जो पानी में कैसे काम करेगी। अगर डूबने की बात करें तो यह वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावक बल से ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। मान लीजिए लोहे की कील ही है। और तैरने की बात की जाए तो अगर वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है तो वह तरल की तरह सतह पर या उसके अंदर तैरेगी। जैसे लकड़ी का एक डंडा ही समझ लीजिए, सतह पर कैसे आएगी? यदि उत्प्लावक बल है वो वस्तु के भार से ज्यादा है तो वस्तु ऊपर की ओर आएगी।
1: जी दोस्तों, वास्तविक जीवन में इसके उदाहरण को देखें तो जहाज और नावें इसके उदाहरण के रूप में मिलते हैं। लोहे का एक छोटा टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन लोहे से बना विशाल जहाज पानी पर तैरता रहता है। और इसका कारण यही है कि जहाज की बनावट ऐसी होती है कि वो अपने वजन से कहीं अधिक पानी विस्थापित करता है जिससे उसे पर्याप्त उत्प्लावक बल मिलता है। पनडुब्बी की अगर बात करें तो पनडुब्बियों में विशेष टैंक होते हैं। जब इसमें पानी भरा जाता है तो पनडुब्बियां भारी होकर डूब जाती हैं और जब पानी निकाल कर हवा भर दी जाती है तो वो हल्की होकर ऊपर आ जाती हैं। लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व मापने के लिए सिद्धांत का उपयोग किया जाता है इसमें। दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत केवल भौतिकी के एक नियम नहीं है बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का आधार है। चाहे वो समुद्र में तैरते विशाल जहाज हों या आकाश में उड़ते गर्म हवा के गुब्बारे, ये सिद्धांत हमें प्रकृति के संतुलन को समझने में मदद करता है।

दोस्तों आज हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री रीमा लागू की पुण्यतिथि है। उन्हें फिल्मों में मां की शानदार भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म मैंने प्यार किया की साथिन मां हो या वास्तव की कठोर मां, फिर या फिर दिल लगी की मालिकाना मां हो, रीमा लागू की इन भूमिकाओं का कोई सानी नहीं था। उन्होंने नए जमाने की मां की भूमिकाओं को खूब चरितार्थ किया। आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, वास्तव, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ हैं जैसी कई फिल्मों में रीमा ने मां का जीवंत किरदार निभाया। उन्होंने सलमान के कई फिल्मों में मां की भूमिका है जो निभाई थी।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये एफएम सन सिटी चैनल है जिंदगी जंक्शन। ये प्रोग्राम आपके लिए स्टूडियो में लेकर आ चुकी हैं चंद्रकला सुथार और मनीषा।

0: दोस्तों नमस्कार, आपने ट्यून कर रखा है 102.1 FM सन सिटी और जिंदगी जंक्शन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। यह दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूँ कार्यक्रम की होस्ट चंद्रकला सुथार
1: और मैं हूँ मनीषा जोशी बोहरा और समय हो गया है जिंदगी जंक्शन प्रोग्राम का 102.1 FM सन सिटी पर।
0: और कंसोल पर हमारा साथ दे रही है उद्घोषिका हिना खान। तो दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्वागत दोस्तों, कार्यक्रम है जिंदगी जंक्शन। दोस्तों इन दिनों सूरज देवता पूरे शबाब पर हैं, झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है और लू के थपेड़े लग रहे हैं, लेकिन इस तपती गर्मी के बीच एक चीज ऐसी है जिसका नाम सुनते ही दिल को बड़ा सुकून सा मिलता है। मनीषा, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, खासकर बच्चों के। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गर्मी की छुट्टियों की, यानी हमारे समर वैकेशंस की। जी हाँ दोस्तों, आज इसी प्रोग्राम में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि हमारी छुट्टियाँ कैसी थी और आज के दौर में हम छुट्टियाँ किस तरह मनाते हैं बच्चों के साथ।

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी के खजाने में खूबसूरत हर जमाने के गीत, आकाशवाणी के प्रोग्राम पेश करने वालों की बेमिसाल आवाजें।
2: नमस्कार।

0: ना शहर अपनी शान,
1: मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी,
2: जो बातें सुनता है जो बातें करता है।
3: एफएम सन सिटी
4: जोधपुर एफएम, हार्ट बीट ऑफ जोधपुर, नए अंदाज में
5: सबके लिए।
6: जो दिन भर घर घर में गूंजती है,
7: ट्यून कीजिए एफएम सन सिटी
8: रेडियो।
9: दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां, नाम सुनते ही मन को बड़ी तसल्ली मिलती है ना मनीषा?
10: बिल्कुल,
9: और सुकून सा मिलता है, खासकर बच्चों को। तो लगभग सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी है और कहीं कहीं होने वाली भी है। अब बच्चों को तो मौजा ही मौजा है और साथ ही मम्मियों को भी थोड़ा आराम मिला है मनीषा।
10: बिल्कुल, सुबह जल्दी उठकर जो टिफिन बनाने की एक वो कहते हैं ना कि भाग दौड़ और आपाधापी रहती है, उससे अब कुछ दिनों के लिए
9: वही यूनिफॉर्म धोना, प्रेस करना, बच्चों को तैयार करना और टिफिन बनाना, होमवर्क करवाना, स्कूल छोड़ना, वो सब सुबह की जो भागम भाग थी बच्चों को लेकर, उससे थोड़ा आराम मिला है मम्मियों को भी। लेकिन यह आराम भी, यह खामोशी बस कुछ ही दिनों की है। कैसे? शुरुआती 3-4 दिन तो मम्मियों को बड़ी तसल्ली मिलती है कि जैसे ही छुट्टियों का पहला हफ्ता गुजरता है तो घर का मंजर बदलने लगता है। कैसे कि अब जो बच्चे सुबह जल्दी उठने के नाम पर मुंह सुकोड़ते थे, वही बच्चे अब क्या करते हैं, छुट्टियों में सुबह 7 बजे की ही उठ जाते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा मनीषा?
10: हाँ बिल्कुल,
9: छुट्टियों के दिनों में तो वो वैसे ही उठ जाते हैं बिना आवाज दिए, मतलब उत्साह के साथ उठते हैं कि अब कोई टेंशन नहीं है उनको भी स्कूल जाने की। और अब स्कूल के होमवर्क की जगह एक नया सवाल हमेशा घर में गूंजता रहता है, क्या वाला आपको पता होगा?
10: हाँ,
9: कौन सा? वही कि मम्मी आज खाने में क्या नया बना है, या मम्मी अब मैं क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ।
10: और हमारा यही सवाल होता है कि ये काम करो, बैग पैक करो और स्कूल जाओ क्योंकि जब रोज स्कूल जाना होता है तब वे नहीं पूछते हैं कि अब क्या करें। लेकिन अब जैसे ही खाली समय पर बैठे हैं तो अब सब बच्चों का यही प्रश्न होता है कि थोड़ी देर खेलते हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि अब क्या करें। और ये जो समय होता है, ये गर्मी की छुट्टियों का ये जो आनंद लेकर आता है, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और ये जो 1.5 महीना गुजरता है वो उसकी पूरे साल भर बच्चों को और बच्चों की माओं को हमेशा एक रहती है कि ये कब आएगा, जो छुट्टियों का सफ़र है ये हमारा कब शुरू होगा, गर्मी की छुट्टियों का।
9: बिल्कुल, और बच्चों की इसी धमाचौकड़ी में ही शुरू होता है फिर मम्मियों का असली स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ड्राइंग रूम अचानक से क्रिकेट का मैदान बन जाता है घर में ही, और सोफे के कुशन किले की शक्ल ले लेते हैं। हाँ, और इस सारे ड्रामे के बीच जो भाई बहनों की छोटी मोटी तकरार होती है, रिमोट पर कब्जा करने की जो जंग होती है, देखा जाए तो यह इन छुट्टियों का असली आनंद ही तो है। घरों से आने वाली वो जो खिलखिलाटे हैं, वो भाई बहनों की छोटी मोटी तकरार है, और दिन भर बिखरने वाले खिलौने हैं, यही तो वो रौनक है जो एक बेजान मकान को घर बनाती है, एक खालीपन को भरे रखती है।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी दोस्तों, एड ब्रेक के बाद में स्वागत है आपका फिर से जिंदगी जंक्शन प्रोग्राम में 102.1 FM सन सिटी प्रोग्राम में। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गर्मी की छुट्टियों की। जिस तरह जिंदगी के जंक्शन पर गाड़ियां रुकती हैं और एक ठहराव लेती हैं, उसी तरह जिंदगी में भी एक ठहराव होना जरूरी है। जब हम साल भर मेहनत करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि हमें भी थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ा सा हम ठहरें और हम सोचें कि अब हमें आगे क्या करना है। हमारी जिंदगी को भी एक नई वापस फिर से ऊर्जा मिले, एक रफ्तार मिले, है ना?
2: बिल्कुल। और ये जो ठहराव है वो छुट्टियों के रूप में हमें मिलता है, चाहे बच्चों को मिले चाहे हमें मिले छुट्टियों में। मनीषा, मम्मियों के लिए काम भले ही जो रसोई का है वो बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही एक मौका भी तो देता है। मौका क्या? वही कि बच्चों के बचपन को बहुत नज़दीक से देखने का, उनके साथ वक्त बिताने का, उन्हें जानने का, उनके साथ बैठकर लूडो खेलने का, उन्हें अपनी समय के जो हम छुट्टियां बिताते थे उसके बारे में बताने का, नाना नानी नाना दादा दादी के बारे में बताने का, उनके किस्से सुनाने का, और डिजिटल स्क्रीन की दुनिया से दूर उन्हें मिट्टी की रिश्तों की सौंधी खुशबू से रूबरू कराने का।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: ये दोस्तों बिल्कुल दिल चाहता है कि कभी ना छूटे ये चमकीले दिन, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं और हमारे बच्चे भी यही चाहते हैं कि ये डेढ़ महीने के बाद में भी छुट्टियां ना खुलें और हम बस छुट्टियों का एंजॉयमेंट लेते रहें। लेकिन एक बात देखिए कि पहले के टाइम में जो गर्मी की छुट्टियां होती थी वो हम किस तरह से अलग तरीके से मनाते थे, और अब जो हो गया है एक अलग ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है तो अब मोबाइल और इंटरनेट का ज़्यादा प्रयोग होने लग गया है, तो बच्चे जो है वो पहले जैसे हम खेल कूद करते थे वैसे अब नहीं करते हैं।
2: बिल्कुल मनीषा, और हमने भी बचपन जिया है, और लेकिन हमारा दौर था ना वो छुट्टियों वाला, वो कुछ अलग होता था। छुट्टियां होते ही सबसे पहले तो हमें नानी का घर दिखता था, हम सीधे नानी के घर जाते थे, क्योंकि नानी का घर का जो माहौल होता है खासकर बच्चों के लिए वो उनको बहुत पसंद आता है। बस ये चीज़ छेड़ी वो चीज़ छेड़ी, यहाँ कूदे वहाँ कूदे, कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। और फिर दोपहर में कोई सोने की वो नियम नहीं था कि सोना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और सुबह सुबह ही बच्चे जल्दी से उठकर दोस्तों के साथ कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो, क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। बस दिन उगा नहीं और बस खेल शुरू, कुछ भी नहीं। और चूंकि नानी के घर जाते थे तो ना कोई रोक टोक नहीं होती थी, नानी कुछ कहती नहीं थी कि हाँ भाई कुछ दिनों के मेहमान है तो बच्चों को जो इंजॉयमेंट करना है कर ले।
2: और इसीलिए नानी का घर अच्छा लगता था। और दोपहर में आम का अचार चुराना, छत पर गद्दे बिछाकर तारों को गिनना, नानी से परियों और राजा रानियों की कहानियाँ है वो सुनना, और वो बाल्टी में बर्फ में पानी डुबो कर रखे गए आम, उन्हें खाने का जो सलीका होता था ना उस वक्त, वो किसी तमीज का मोहताज नहीं था मनीषा। और पूरे चेहरे पर आम का रस लगा होना उस वक्त की रईसी थी, और कुल्फी वाले की घंटी सबको मतलब सोने ही नहीं देती थी, उसका इंतज़ार बहुत बच्चे करते रहते थे उस वक्त। और हम सबको भी मटके वाली जो वो मलाई वाली जो कुल्फी होती है या फिर वो रंग बिरंगी जो बर्फ के गोले होते हैं उसके पीछे तो हम मतलब टूट पड़ते थे हम सभी, उस एक गोले को हासिल करने के लिए जो उत्साह होता था वो अकथनीय है। और वो छोटी छोटी खुशियाँ ही तो हमारी ज़िंदगी की असली पूंजी है दोस्तों।

0: कितनी तन्हा हूँ मैं, कितना अकेलापन, ऐसे में कौन मेरे साथ रहे। मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल में मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी। कोई मिल गया हमेशा मेरे साथ, मेरा अपना चैनल रेडियो सन सिटी। सुनते रहिए 102.1 FM रेडियो सन सिटी, इट्स माय चैनल।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल हमारे समय में गर्मी की छुट्टियों के मायने थोड़े से अलग हुआ करते थे। जैसे दोपहर में दादी नानी से कहानियाँ सुनना, आम तरबूज कुल्फ़ी और ठंडी लस्सी का आनंद लेना। दादी या नानी के घर छुट्टियाँ बिताने जब जाते थे तो शाम को पेड़ों के नीचे या छत पर बैठकर ठंडी हवा खाना, रात में छत पर चारपाई डालकर तारों के नीचे सोना, पतंग उड़ाना, साइकिल चलाना और पेड़ों पर चढ़ना, इस तरह से हम अपने गर्मी की छुट्टियाँ बिताया करते थे, है ना?
2: बिल्कुल मनीषा, और छुट्टियों का एक पहलू यह भी था कि उन दिनों छुट्टियों में हम कुछ नया सीखने का मतलब उत्साह रहता था। ये स्वतः ही आता था, किसी के कहने से नहीं, हमारे अंदर खुद ब खुद ऐसा लगता था कि हम छुट्टियों में ये सीखेंगे वो सीखेंगे। जैसे पेंटिंग, कोई पेंटिंग सीखता था, कोई गिटार के तार छेड़ता, तो कोई नई किताबें पढ़ता, कोई सिलाई कढ़ाई सीखता था। खासकर कुकिंग सीखने का हम सब में बड़ा उत्साह रहता था, बिल्कुल। और वो जो वक्त था वो अपनी रचनात्मकता को निखारने का था। जब स्कूल की पढ़ाई का बोझ नहीं होता था तब छुपी हुई प्रतिभाएँ भी तो बाहर आती थी, और हमें भी लगता था कि हमने कुछ सीखा, इन छुट्टियों का उपयोग किया है। वो छत पर पानी का छिड़काव करना, फिर चार पाइयां बिछाना और उस पर ठंडी हवा के झोंके में लेटना, याद है ना आपको? और दादी के पास लेटकर आसमान के तारों में सप्तऋषि को ढूंढना, ये सब बातें हैं ना। उस वक्त मनीषा, उस वक्त आसमान भी देखो, आपने गौर किया होगा कि आसमान भी बहुत साफ नजर आता था और नजदीक सा लगता था, मतलब देखते रहो बस तारों को रात को छत पर पड़े हुए। और वो सुकून, वो बेफिक्री ही तो असली आनंद थी। और आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो असल में तो हम उसी खोए हुए बचपन की तो आनंद की तलाश कर रही होते हैं, है ना मनीषा? और कुछ भी कहो, हमारा पुराना दौर है ना, वो सबसे अच्छा था। अब तो बस यादों की पोटली सा लगता है, लेकिन ये जो पोटली है वो जब जब खुलती है अपनी खुशबू जरूर बिखेर देती है।

0: जी दोस्तों, मुझे तो याद है कि मैं अपनी गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारी कहानियों की किताबें पढ़ा करती थी, जैसे विक्रम बेताल, चाचा चौधरी और भी खूब सारी किताबें पढ़ने का शौक रखती थी और पढ़ती थी। लेकिन अब आज के ज़माने में जैसे बच्चे जो हैं वो तकनीक की दुनिया में से जुड़ चुके हैं, तो अब उनकी गतिविधियां भी बदल गई हैं और आजकल बच्चे गर्मी की छुट्टियों में मोबाइल, वीडियो गेम और इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिताते हैं और जैसे नई नई स्किल डेवलप करना, कोडिंग वगैरह इन तरह की चीज़ों में अपना ध्यान लगाते हैं और इन तरह की चीज़ों को सीखने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, और वर्तमान परिदृश्य में जब हम आज की पीढ़ी को देखते हैं तो वे एसी के कमरों में मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं। आजकल के बच्चों और युवाओं का एक बड़ा समय है वो मोबाइल में, टैबलेट में, कंप्यूटर में और गेमिंग कंसोल पर बीतता है। छुट्टियों में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और यूट्यूब पर फिल्में, वेब सीरीज और कार्टून देखना एक आम चलन बन चुका है। आज के अभिभावक भी छुट्टियों का उपयोग बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और नई चीज़ें सिखाने के लिए करते हैं और बच्चे इन दिनों कोडिंग, रोबोटिक्स, फॉरेन लैंग्वेज, अबेकस या फिर डांस, म्यूजिक, पेंटिंग या मार्शल आर्ट जैसी हॉबी क्लासेस में समय बिताते हैं। और ज़्यादा गर्मी और बदलते शहरी परिवेश के कारण मनीषा, अब गलियों और मैदानों में खेलने का चलन कम हो गया है और इसकी जगह लोग मॉल जाना, गेमिंग जोन, इंडोर थीम या पार्क या सिनेमा हॉल में वक्त बिताना पसंद करते हैं, है ना। और आधुनिक जीवन की भागदौड़ से दूर आजकल परिवार छुट्टियों में किसी ठंडे इलाके या फिर हिल स्टेशन पर फैमिली वेकेशंस प्लान करते हैं। बच्चों के लिए एडवेंचर कैंप्स और स्पोर्ट्स कैंप्स या फिर थिएटर वर्कशॉप का चलन बहुत बढ़ा हुआ है इन दिनों, और जहां वे कुछ दिन रहकर नई चीज़ें सीखते हैं, अब लोग रिजॉर्ट्स या फिर नए जो वेकेशंस पर जाना पसंद करते हैं, है ना। और आजकल की जो छुट्टियां हैं वो आरामदायक है, तकनीकी रूप से समृद्ध है और कुछ नया सीखने के लिहाज से बहुत बेहतर है। लेकिन इस आधुनिकता के बीच कहीं ना कहीं वह पुरानी जो सादगी भरा बचपन है, वो सौंधी मिट्टी की जो महक है, वो अपनों के साथ का जो असीम सुकून है, थोड़ा पीछे छूट गया है मनीषा। लेकिन कहते हैं ना कि बदलाव अच्छा है और इसे अपनाने में ही समझदारी है, और ये बात भी तो है कि पुराना दौर लौट कर भी आता है।

0: बिल्कुल, हम भी ऐसे ही हो जाते हैं और हमारे बच्चे भी गर्मी की छुट्टियों में बेफिक्रे से ही हो जाते हैं। लेकिन बच्चे तो बेफिक्रे रहेंगे क्योंकि उनकी गर्मी की छुट्टियां हैं, उनकी आदत बन जाती है कि बस सुबह उठते ही हमें खेलना शुरू करना है, जो शाम तक हमें खेलते रहना है, चाहे वो घर में बैठ कर इंडोर गेम्स खेलना हो, कंप्यूटर पर गेम्स खेलना हो, या फिर दिन में चिलचिलाती धूप में बाहर खेलना हो। लेकिन ये हमारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम बच्चों को ध्यान रखें कि दिन के समय में उन्हें बाहर नहीं भेजें, क्योंकि गर्मी बहुत तेज बढ़ रही है और लू से हमारे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दिन में उन्हें इंडोर गेम्स खेलने के लिए प्रेरित करें और जब शाम होती है तब हम उन्हें बाहर आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रेरित करें।
1: बिल्कुल मनीषा, वक्त बदला है तो छुट्टियों के तरीके भी बदले हैं, लेकिन अगर इस बार आप अपनी या अपने बच्चों की छुट्टियों को कुछ अलग यादगार बनाना चाहते हैं तो उन्हें कुदरत से जोड़िए। इस गर्मी में बच्चों को गैजेट से दूर रखें और सुबह शाम के वक्त किसी पार्क में ले जाएं, उन्हें पक्षियों के लिए परिंदे में पानी रखना सिखाएं। जब वो किसी प्यासी गोरैया को पानी पीते देखेंगे तो जो खुशी उन्हें मिलेगी वो किसी वीडियो गेम में नहीं मिल सकती है। एक बार ये करके ज़रूर देखें और किताबों से दोस्ती कराएं। इस बार किसी लाइब्रेरी की सैर करवाएं उन्हें, पंचतंत्र है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं या किसी कॉमिक्स की जो कहानियाँ हैं, किताबें हैं, वो उनसे उन्हें रूबरू कराएं और कुछ नया सीखने का जो क्रिएटिविटी है उनको वो सिखाएं। कोई घर पर ही बेकार चीज़ें पड़ी है उन्हीं से कुछ बनाना सिखाएं, या कोई भी उनकी जो पसंद की चीज़ें हैं उनसे कुछ बनाना सिखाएं। और एक हफ्ते में एक शाम ऐसी घर में रखें बच्चों के साथ कि जहाँ पे कोई भी सदस्य मोबाइल न हाथ में ले, सब साथ बैठें, अंताक्षरी खेलें और पुरानी तस्वीरें देखें। दोस्तों यही तो है असली छुट्टियों का मज़ा।

0: दोस्तों चलते चलते तो हम इतना ही कहेंगे कि छुट्टियां चाहे बचपन की हों या आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी से चुराए हुए कुछ पल के, इन्हें सिर्फ गुजारिए मत, इन्हें खुलकर जिए। और इसी बात के साथ
1: जी दोस्तों बिल्कुल, ये जो छुट्टियां होती हैं ये सिर्फ बच्चों के शारीरिक विकास के नहीं, इसके साथ ही मानसिक विकास भी ज़रूरी होता है। ये कर्तव्य माओं का ही होता है कि वे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी देखभाल करना, बच्चों को सिखाएं, उनमें वे संस्कार डालें, घर में दूसरे जो सदस्य हैं उनकी सहायता करने की, सहयोग की भावना जो है वो बच्चों में डालें। तो ये जो संस्कार डालने का कार्य होता है ये भी हम इन 1.5 महीनों में कर सकते हैं, क्योंकि पूरे साल भर हमें इतना समय नहीं मिल पाता था ना बच्चों को, तो ये जो समय होता है बच्चों में संस्कार डेवलप करने का भी होता है। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें और आपकी गर्मी की छुट्टियां बहुत ही मजे से गुजरे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को अब यहीं देते हैं, हमें दीजिए इजाजत। मुझे
0: इस कार्यक्रम में मैं थी चंद्रकला सुथा
1: और मैं मनीषा जोशी बोहरा,
0: दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन आप सुनिए समापन ये गीत।

102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये एफएम सन सिटी चैनल है और दोस्तों आपके लिए प्रोग्राम जिसका नाम है मंडे मेलोडीज़।

साथियों, मंडे मेलोडीज में कुछ बेहतरीन फिल्मों की खूबसूरत बातें और यादें जो आज भी जज्बातों को झकझोर देती हैं, और जिक्र आते ही याद आ जाती हैं कुछ बेहतरीन फिल्में।

अगर हम बात करें फिल्मों की तो फिल्में देखना सभी की पसंद में शुमार होता है, मगर कुछ ही फिल्में होती हैं जो दिल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। उन्हीं में से एक ये फिल्म।

का इजहार कैसे किया जा सकता है और प्यार के अभिनय को अनारकली और सलीम के रोल में किस प्रकार दिखाया जा सकता है वो इस फिल्म को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

जरा सोचिए, बिना बोले प्यार का अभिनय करना कितना कठिन है। बोलकर प्यार का इजहार करना जितना आसान है, उतना ही कठिन है बिना बोले। सिर्फ एक्सप्रेशन से प्यार

दोस्तों बात है मुगले आजम की, जहां अभिनेत्री मधुबाला अनारकली और अभिनेता दिलीप कुमार सलीम का रोल कर रहे थे। 1953 से लेकर 1960 के बीच में दोनों में प्रेम से लेकर ब्रेकअप और रिश्तों में कड़वाहट तक का सफर कायम रहा, मगर बिना बोले किस प्रकार इस प्रेम की कहानी को रियलिटी के रूप में बयां किया वो फिल्म को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ रियलिटी और दर्द को बयां करना चाहते थे, वो सपना उनका साकार हुआ। मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच कड़वाहट कोर्ट केस के बाद बोलचाल तक नहीं थी, मगर जब सेट पर आते तो बिना बोले उस प्रेम की तड़प और दर्द को रियलिटी में बयां करते, संवाद बोलते और फिर जुदा हो जाते। हर दिन जिंदा होना और मर जाना जैसे टास्क को फेस करते हुए इस फिल्म के संवाद बने। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। बॉलीवुड में आज भी अनारकली के रोल की कोई सानी नहीं है। तो साथियों, कई ऐसी फिल्में हैं जहां जज्बात भाषा पर अल्फाज पर भारी पड़ जाते हैं। आज ऐसी ही फिल्मों की बात करेंगे जो जज्बातों से प्यार का अभिनय दिखाने में कामयाब हुई।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मंडे मेलोडीज। दोस्तों, 1963 की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म मेरे महबूब अपने सदाबहार गीतों के लिए याद की जाने वाली क्लासिक फिल्म मानी जाती है। संगीतकार नौशाद के संगीत निर्देशन में और गीतकार शकील बदायूं के लिखे गीतों को राजेंद्र कुमार और साधना पर फिल्माया गया। बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक स्थान पर रही बहुत ही खास फिल्म थी। एक मुस्लिम परिवार सामाजिक फिल्म थी जिसकी पृष्ठभूमि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और लखनऊ घरानों की परंपरा को लेकर बनाई गई थी। शूटिंग भी इन्हीं स्थानों पर की गई थी, मगर पर्दे और नकाब के पीछे साधना की खूबसूरती तो वहीं टोपी शेरवानी और अलीगढ़ कट पायजामे में राजेंद्र कुमार। प्रेम का इजहार तो कर सकते थे, मगर एक मुलाकात के लिए जैसे बरसों बरस का इंतजार महसूस होता था। हर मुलाकात के बीच में दोस्तों की दस्तक, कभी अब्बा हुजूर की अदायगी, कभी उनका आ जाना, कभी छोटी बहन का पहुंच जाना, कभी प्रोफेसर का बीच में आ जाना, मगर फिर भी नकाब के पीछे से ही सही प्यार का इजहार बिना बात किए होता रहा।

फिल्म के अंदर बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं। जब कहीं जैसे तैसे दोनों की मुलाकात होती तो अल्फाज साथ नहीं देते। बहरहाल ये भी एक ऐसी ही फिल्म थी जिसमें अल्फाज कम बल्कि बिना बात किए प्रेम का अभिनय साबित हुई। फिल्म मेरे महबूब, जो आज भी हर नौजवान और कॉलेज गोइंग के दिलों में धड़कन की तरह धड़कती है।

सभी गीत बहुत हिट हुए थे। और खास बात यह है कि जिन स्थानों पर, जिन कॉलेज में इसकी शूटिंग की गई थी, वहां आज भी जब भी एनुअल फंक्शंस होते हैं, वहां पर मेरे महबूब फिल्म के गीत आज भी लड़के लड़कियों द्वारा जरूर गाए जाते हैं।

इस समय आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज एफएम सन सिटी चैनल और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मंडे मेलोडीज़।

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मंडे मेलोडीज, और इस प्रोग्राम में आज हम जिक्र कर रहे हैं कुछ उन खास फिल्मों का जिनमें बिना बोले बिना अल्फाज के प्यार के जज्बात किस तरह से बयां हुए और फिल्म प्यार का अभिनय बन गई। इन्हीं में से एक फिल्म थी हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी फिल्म

निर्देशन और निर्माण ओम प्रकाश ने किया था, संगीत मदन मोहन ने दिया था। मधुबाला, भरत भूषण, प्रदीप कुमार सहित कई सह कलाकारों ने फिल्म को नयापन दिया। कुछ ही घंटों में समाप्त होने वाली कहानी हर बार सस्पेंस बन जाती है। फिल्म का नाम था गेटवे ऑफ इंडिया। एक ऐसी उत्तराधिकारी की कहानी बताती है जो अपने हत्यारे चाचा से बचने के लिए घर से भाग जाती है, मगर कहानी का क्लाइमैक्स कब बीच में प्रेम की दस्तक बनकर आएगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। मगर इस गीत को सुनकर इस फिल्म में प्रेम की उस कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है जहां कम अल्फाज में जज्बातों की भरमार देखने को मिलती है।

साथियों, 1965 में बनी हिंदी भाषा की एक मसाला, रोचक और मनोरंजक फिल्म थी वक्त। निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था, निर्माण बी आर चोपड़ा ने किया था। इसकी पटकथा अख्तर मिर्जा और अख्तर उल ईमान ने लिखी थी।

सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, साधना, शर्मिला टैगोर, बलराज सहानी सहित अन्य सह कलाकारों ने फिल्म को रौनक बख्शी।

वक्त फिल्म कमर्शियल फिल्म होने के साथ अपने स्टाइल और अदायगी के लिए भी एक नामी फिल्म मानी जाती है। कहानी में दिखाया समय ने किस प्रकार एक खुशहाल परिवार को अलग किया, मगर मुश्किलों से गुजरने के बाद फिर मिले परिवार में एक नहीं कई तरह की प्रेम कहानियां एकत्रित हो गई। हर प्रेम कहानी अपने आप में एक अंदाज लिए हुए थी।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचरन जीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
3: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
4: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
5: इस समय आपने ट्यून किया है FM सन सिटी जोधपुर और प्रोग्राम का नाम है मंडे मेलोडीज। दोस्तों, गीतों को सुनकर, फिल्मों की बातें सुनकर आपको ये अंदाजा लग रहा होगा, वाकई क्या कभी कुछ ऐसी फिल्में भी होती हैं जिनमें अल्फाज कम होते हैं, सिर्फ जज्बात से प्यार का अभिनय पूरा किया जा सकता है। जी हाँ, ऐसा ही होता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस हुआ करते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता।

तो हम बात कर रहे हैं आवारा फिल्म की। फिल्म ने फिल्म देखने वालों की एक पीढ़ी को आवारा की छवि दिखाई। आरके स्टूडियो की बेहतरीन रचना के रूप में जानी जाती है आवारा फिल्म। सामाजिक समस्याओं पर आधारित अपनी पहली फिल्म में राज कपूर ने रोमांस और त्रासदी, अपराध और सजा, प्रकृति और पालन पोषण, संगीत और नाटक के धागों को खूबसूरती से पिरोया। दरअसल नरगिस और राज कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री असल जिंदगी में भी झलकती रही। वैसे तो फिल्म का हर गीत रोमांस भरा था, मगर चांदनी रात और पानी के बीच कश्ती, इसमें नरगिस व राज कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आज भी उतना ही रोमांटिक फील होता है जितना उस समय लगता था।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मंडे मेलोडीज। और अब हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिस फिल्म की शूटिंग कोलकाता में हुई थी। ये प्रसिद्ध बंगाली लेखक आशुतोष मुखर्जी की बंगाली लघु कहानी नर्स मित्रा पर बेस थी। ये फिल्म निर्देशक असित सेन की अपनी बंगाली फिल्म दीप ज्वले जाई का रीमेक है। लेकिन राजेश खन्ना और वहीदा रहमान की ये फिल्म बहुत ही हिट हुई जब इसे हिंदी में बनाया गया। सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये उस दौर की सबसे गहरी कहानी थी जहां इंसान की सोच, भावनाएं और दिल एक दूसरे से टकराते हैं। जी हां, फिल्म का नाम खामोशी।

दरअसल फिल्म की कहानी कुछ अजीबोगरीब सी है। एक नर्स अपने मरीज से प्यार करती है, लेकिन हर बार उसका प्यार उसे तोड़ देता है। ये कहानी बयां करती है कि प्यार और पागलपन की रेखा कितनी पतली होती है। हेमंत कुमार का संगीत था, गुलजार ने गीत लिखकर खुशबू बिखेर दी थी।

साथियों, इस फिल्म को जो बात अलग करती है वो है कमल बोस की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। उन्हें अपने इस काम के लिए 18वीं फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार मिला। वहीदा रहमान को उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया और राजेश खन्ना के अभिनय की भी बहुत प्रशंसा की गई। फिल्म में अल्फाज ना के बराबर मगर

0: और जज्बातों की भरमार।
1: जागते रहेंगे
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मंडे मेलोडीज अपनी दोस्त हिना के साथ।

0: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
1: दोस्तों, आपने ट्यून किया है 1021 FM। 1963 में बनी हिंदी भाषा की ऐसी फिल्म का जिक्र करने जा रही हूं जो मुगल सम्राट शाहजहां की ऐतिहासिक कथा पर आधारित है। शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज की प्रेम कहानी से लेकर मृत्यु और फिर उनकी याद में बनाए गए मकबरे यानी कि ताजमहल के निर्माण तक की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसमें अल्फाज कम और जज्बात ज्यादा हैं। फिल्म व्यावसायिक रूप

से सफल रहे। शाहजहां के रूप में प्रदीप कुमार, मुमताज के रूप में अभिनेत्री बीना रॉय ने किरदार निभाया। किस प्रकार दोनों की नजर एक मीना बाजार में एक दूसरे पर पड़ती है और पहली नजर में किस तरह ये प्रेम हो जाता है और कम अल्फाज से अभिनय की मिसाल बनती है ताजमहल। संगीत दिया था संगीतकार रोशन ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने।

दोस्तों ताजमहल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार साहिल लुधियानवी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड संगीतकार रोशन को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए लता मंगेशकर को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मंडे मेलोडी इस प्रोग्राम में आज आपसे बातें उन फिल्मों की जिनमें प्यार के लिए जज्बातों की भरमार है मगर अल्फाज बहुत कम। जज्बातों से बातें और वादे, इजहार का ऐसा कमाल थी फिल्म उस्तादों के उस्ताद, जिसमें कयामत के बाद के भी

दोस्तों, हिंदी सिनेमा में ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जब हम फ्लैशबैक में जाते हैं और गौर फरमाते हैं तो अनेकों ऐसी फिल्में हैं जिनमें अल्फाज कम हैं, एहसास है, जज्बात है, मगर देखने वालों को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता। बड़ी खामोशी से ये फिल्में एक नर्म और बहुत ही खलिश आपको दे जाती हैं, जिन्हें देखने के बाद भी मज़ा आता है, उनके बातों को सोचने में मज़ा आता है, उन गीतों को सुनने में मज़ा आता है, और ये गीत कब किस तरह कब आपको गुदगुदा कर चले जाते हैं अंदाज़ा ही नहीं होता। अधूरी ख्वाहिशें मगर दिल में जिंदा प्रेम की मिसाल थी प्यार भरी पाल की।

दोस्तों, मंडे मेलोडीज में आप सुन रहे हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत गीत जिनमें जज्बात ज्यादा हैं, अल्फाज कम हैं। कुछ अजीबोगरीब कहानी थी, या यूं कहिए एक मिसाल थी ये फिल्म, जिसमें मुस्कुराहटों से अभिनय को साकार किया गया, मगर इस गीत ने इसे इतना खास बना दिया कि ये फिल्म आज भी लोगों को याद आती है। फिल्म का नाम था ब्लैक कैट।

हमने आपको दी और आज इतना ही। अगली बार अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दोस्त हिना को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे।

दोस्तों दरअसल जब जज्बातों में वजन होता है और एक्सप्रेशन में रियलिटी होती है तो शायद अल्फाजों की जरूरत नहीं होती।

लेकिन ये बात भी सही है ना कि हमें आपको एक दूसरे से जुड़ने के लिए जज्बात की भी ज़रूरत होती है और अल्फाजों की भी ज़रूरत। तभी तो हम आपको अच्छी जानकारियाँ दे सकते हैं फिल्मों से जुड़ी हुई। और दोस्तों आज बस जितनी जानकारी हमारे पास बहुत खूबसूरत थी वो

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मंडे मेलोडीज 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये एफएम सन सिटी चैनल है। दोपहर के 12 बजने को है। कुछ देर में हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याज विश्वस्त।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के

0: स्तर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917 जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़क कर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, मैंने प्यार किया फिल्म से। एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज है, असद भोपाली के बोल राम लक्ष्मण की तर्ज।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं खुशबू फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने, लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है राहुल देव परमन ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजें थीं, रविंद्र रावल के बोल थे, और अब सुनवा रहे हैं आपको ये गाना।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

फिल्म लोफर का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: संवार है,
1: है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं वास्तव फिल्म का गाना सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

ಏನು

जब तक तूफान ना उठता है।

फिल्म पारस का ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजों में वर्मा मलिक के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मजबूर का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ।
1: ये है फिल्म महल का गाना, आशा भोसले की आवाज में। साथ में आप सुन रहे हैं देवानंद की आवाज।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

आशा भोसले और डैनी की आवाजों में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म काला सोना का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का सादर नमस्कार। और आज का सुरीला सफर है बन रहा कुछ अलग ही ढंग से, क्योंकि आपके संदेशों में बात है आज की और गुजरे हुए कल की। तो अब आपको बता देते हैं आज का टेक्स्ट। जैसे हमारे कुछ श्रोता जो कि फेसबुक पेज पर, जहां पर गीत भी मिलते हैं और मीत भी मिलते हैं, वहां पर उन्होंने ये टेक्स्ट देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए हम बता देते हैं आज की ये इबारत। कई बार कुछ ऐसा होता है कि गुजरा हुआ वक्त चुपके से दबे पांव मन में चला आता है और किसी जादूगर की तरह साकार कर देता है वो बीता हुआ पल। जब कोई मिला या कोई बिछड़ गया, कुछ टूट गया, कुछ छोड़ दिया या कुछ पा लिया, वो पल जहां मन के बावरे पंछी संग रोके नहीं रोकी उमंग, या जहां किनारे पर डूब गई दिल की कश्ती, यादों की उन गलियों में भटकता ही रहे मन, लेकिन सितारे मेहरबान हो तो पुकार लेता है वर्तमान, ओ मितवा आ जा रे। इस गली में कहीं खो सकता है आपका आज, जल्दी से आगे बढ़कर थाम लीजिए अपने आज का हाथ, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं, तो चलिए उसी राह पर जिस पर खड़ा है आज अभी यहीं। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर आपने चुन लिए हैं गीत। भाई गीतों की इस लिस्ट में बहुत लंबी सी लिस्ट है, और हमारे कुछ साथियों ने बताया है बहुत सारे गीतों के बारे में। एक श्रोता ने बताया है, कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना चुपके से दिल दे दे, चला जाता हूं किसी की धुन में, जादूगर सैया, इस तरह के उन्होंने करीब 15 गीत छांटे हैं। वाह क्या बात है, गीतों के मामले में कितने संपन्न है हमारे श्रोताओं की याददाश्त। वाकई इस बात का हमें कई बार ये भी लगता है कि कितने ज्यादा गीतों से जुड़े हुए लगाव है आप सभी को। एक श्रोता का जो संदेश है वो कह रहा है कि उसमें कुछ यूं कहा गया है कि आज की भारत ने मन के पक्षी को अतीत में ले गया। सही कहा गया है, आप भूगोल बदल सकते हैं, इतिहास नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर दस्तक देता है। यह अतीत सुनहरा या कड़वा हो सकता है, मगर वे लम्हे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। बेहतर है बीते अतीत के बुनियाद पर जीवन को बुलंद कर वर्तमान में जीना ही सार्थकता है, क्योंकि वर्तमान ही हकीकत है। समय की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई में छिपे यादों के मोती अक्सर हमारे दिल के आंगन में बिखर जाते हैं। कभी कभी हवा का एक

हमारे एक श्रोता ने खुशी जाहिर की है कि वाह, मेरी लिस्ट का पहला ही गाना मिल गया। बिल्कुल सही बात। जवाब भी आए हैं बहुत ढेर सारे, ज्यादातर दिनेश ठाकुर या अमोल पालेकर जी की बात हुई है। एक श्रोता ने राजेश खन्ना का भी नाम लिखा है, ये रजनीगंधा फिल्म का गाना है। योगेश के बोल सलील चौधरी का संगीत और गाना बैकग्राउंड में चलता है। दरअसल शुरू ये विद्या सिन्हा के चेहरे से होता है और बाद में फिर दिनेश ठाकुर और अमोल पालेकर भी इस गाने में नजर आते हैं। तो भाई ये जो गाना है कि कई बार यूं भी देखा है, जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है तो मन तोड़ता है जब वो सीमा रेखा और कूद जाता है जाके जल्दी से अतीत की गलियों में। ऐसा जब कुछ आपके साथ हुआ हो उस वक्त के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। बताइए हमें, आज से 10, 15 या 20 साल पहले ऐसी कौन सी बात हुई थी जो आज भी याद करके या तो आप हंस पड़ते हैं या फिर दूसरों को हंसी आ जाती है। संदेश है एक श्रोता का, कहते हैं कि समय किसी के रोके नहीं रुकता, वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, उसको पकड़ कर चलने में ही समझदारी है। वक्त के साथ ही लोग मिलते और बिछड़ते हैं। हमारा बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए हमें भविष्य की चिंता छोड़ आज में जीना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक और श्रोता कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमें यह एहसास जरूर दिलाती हैं कि हमारे जीवन में हमने जीवन में कितना कुछ जिया है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी बातें, कुछ बिछड़े रिश्ते, यही सब मिलकर मन एक ऐसी व्यथा पैदा करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। यादें हमारे भीतर चुपचाप सांस लेती रहती हैं, कभी रात की खामोशी में, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी अकेलेपन की किसी लंबी शाम में वे फिर दस्तक देती हैं। बहुत सुंदर। एक और श्रोता ने आज शीर्षक से कुछ बात कही है। आज कोई ठहरा हुआ समय नहीं, बल्कि वो द्वार है जहां मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि जीवन केवल आज में ही धड़कता है। जो व्यक्ति आज में जीता है वो किसी भी कार्य को पूर्ण समग्रता से कर सकने की क्षमता रखता है। यही पूर्णता ही ध्यान यानी मेडिटेशन है। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि अतीत के सबसे मोहक पलों में से एक होता है बीता हुआ समय। समय अपने अंदर कितना कुछ समोए रहता है, किसी अपने का मिलना बिछड़ना, यादों के तिलिस्म के ना जाने कितने दरवाजे हैं, मगर जीवन तब जीवन की तरह खिल उठता है जब कोई अपना हमें पुकार लेता है। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी सौगात लेकर आते हैं, ऐसे में उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो है वो बस आज में है, इसी पल में है। बहुत सुंदर बात कही है। और एक और श्रोता ने बताया है कि सुरीला सफर में कुछ गाने, गुजरा हुआ जमाना, वक्त, पल, मितवा, कश्ती आर सच वर्ड्स ऑन विच टूडेज सुरीला सफर विल गो ऑन, द रेस्ट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपकी लिस्ट में इसने, आपने जो शब्द चुने हैं, देखिए उन पर गाने आ रहे हैं या नहीं, और सोचिए तो कोई गाना आपके ख्याल में आ रहा है या नहीं। लेकिन अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

0: जेठ री तपती दुपहरी माथा पर चढ़ो तब तो सूरज और बढ़ती लू एड़ो लागे जिया धरती तातो तवो बन गई और एड़ी कड़कती धूप में जो ताती हवा चाले तो जीव है जो को कड़प उठे पर ये ताती दोपहरी ने ठंडी करण सारू आपा कने दो चीजा है एक तो है कालजा ने ठंडक देवन वाली राबड़ी छाछ और दूजो है अपनी इमायड़ बोली रो मीठो रसरंग कार्यक्रम गणगौर और आज रो गणगौर कार्यक्रम लेर मैं आपरे साथे आपरी रेडियो सखी कोमल राठौड़ और आज मारे साथे है
1: आज मैं हूँ कोमल राठौड़ रेसागे ममता राजपुरोहित गणगौर सरीखी सगली सखिया रो घणी मान स्वागत है आप दोई सखिया रो अभिनंदन स्वीकार करो और आप चही तो जो मनमोहनो कार्यक्रम है बिरमायने गीत संगीत और जो मायड़ भाषा है बिनी चर्चा रो आप आनंद उठाओ और एक और जो खास पर्व अबार चाल रही हो कोमल जी के आप बात करी जेठ मेनारी इन बार जो जेठ है बिनो जो दिन है वे बढ़ चुका है क्यों क्योंकि आपा काल सु पुरुषोत्तम मास रो स्वागत करिया हूँ और पुरुषोत्तम मास जो है जो धर्म री भक्ति री और गीत अपने पूजा पाठ और भगवान री आराधना रो सुरीलो संगम लेर आवे है और आज आप इन कार्यक्रम रे माने अपने सख्या ने बताओ कि इन जो समय है वो अधिक मास इन मायने आप जो भी पूजा पाठ करा या जो भी दान पुण्य करा विनो फल जो है वो घना गुणा बर्डन आपने मिलिया करे तो चलो कार्यक्रम की शुरुआत करा गीत संगीतों
0: बिल्कुल

0: मायड़ भाषा मोवणी ज्यो मोत्या रोहार बिन भाषा रे भाईला सुनो लागे थार।
1: बिल्कुल कासा संघर्ष रे बाद अपनी राजस्थानी भाषा ने शिक्षा रे क्षेत्र रे मायने जगह मिली है और आजकल देख भी रिया हाँ कि राजस्थानी भाषा है जो कि केवल घर चूल्हा चौका या चौपाल तक ही सीमित कोनी बल्कि आ रोजगार में या साहित्य में आधुनिक तकनीक का मंच माथे पर भी आप देख रहे हैं कि छारी है और जकी बस अपन हिवड़ा में बस्ती बाब पोथिया में भी गूंज रही है और अब इन सु टाबरा ने अपनी संस्कृति रो जो ज्ञान है वो जड़ सु मिलेला और बिना राजस्थानी सिर्फ बोली को आ तो अपना अपना संस्कार है अपनी रीत प्रीत है अपने पुरखा रो एक अनमोल आशीर्वाद है जो कि आशीर्वाद है जो कोई भाषा री मिठास अगर देखनी भी वह तो कदी आप गांव री चौपाल माथे बैठ देखो बडेरे री बाता जकी है बाप सुन जो कदी मारे हाथ री बाजरी री रोटी काचरी री चटनी रे साथ जीमो सा पदो सा पधारो सा ओ है थे जो को आप आंकी जकी बोली है भी रमाई ने आपने सुनने मिलेला।
0: राज बनाया राजिया भाषा थर पी जान बिन भाषा रे भायला क्या रो राजस्थान। तो बिल्कुल कोई भी राजा एक राज्य री स्थापना कर सके एक नगर शहर री स्थापना कर सके पर बिन नगर में बिन संस्कृति में जीव घाड़ने रो काम एक भाषा करिया करे।
1: बिल्कुल।
0: तो बिल्कुल अब भाषा जो इन भाषा री मिठास है अपनी संस्कृति है अपने वीरतापूर्ण इतिहास री छाप है इन अपने इतिहास ने गौरवमय इतिहास ने आगे आगे पहुँचाने खातर और अपना जो आने वाली पीढ़ी है बिया तक अपनो जस गौरव पहुँचाने खातर अपनी इन भाषा रो खूब खूब मान है। और दूसरी बात आ भी है कि जो आप बात करा हिंदी री हिंदी री जो लिपि है वह देवनागरी है तो इन पर एक दुखो बताऊं कि देवनागरी अति कठिन स्वर व्यंजन व्यवहार ताते जगत रे सुगम हित टोडरमल मुड़िया किनो प्रचार। क्यों मतलब ओ कि जो हिंदी री लिपि जो है वह देवनागरी है ब्या ही अपनी जो मायड़ भाषा है बिनी जो लिपि है वह मुड़िया लिपि किया करे। कई बार आ भी बात आप देखी है कि अपनी भाषा री लिपि कोनी तो नहीं सा आप बात कोनी अपनी भाषा री भी एक लिपि है और बिन लिपि ने आप मुड़िया किया करो। और एक खास जो बदलाव आपने देखने मिलो है 12 मई ने सुप्रीम कोर्ट रे तरफ आप एक बात जानी है कि अपनी जो प्राथमिक स्तर री शिक्षा है बिरमायने भले ही सरकारी या गैर सरकारी स्कूल हो बिरमायने अपना राजस्थानी भाषा ने शामिल करनी हिदायत सरकार ने मिली है। तो बिल्कुल अपना कार्यक्रम रे मायने इन बात री जो जानकारी है बा अपनी सखियां तक अपना सुनने वाले श्रोताओं तक पहुंचावनी खूब जरूरी है थी। तो चलो मनावा इन खुशी रो इन बढ़िया खबर रो एक जो आपने इन कार्यक्रम रमायने जो आप बात कर रिया हो कि इन भाषा ने आप किन तरियाँ एक गौरवमयी आगे पीढ़ी तक पहुँचाने खातर प्रयास कर सको बिन प्रयास री बात कर रिया हो तो बिल्कुल इन भाषा रो जो गुणजस है जो गौरव है वो किनोई छानो नहीं है और इन खातर आपने कोई विशेष गुणगान करने भी जरूरत नहीं है पर हाँ आज जो पहल हुई है बिनो सम्मान जरूर है।

बिल्कुल, 18 लोगारी बोली तो प्यारी है ही, साथ ही साथ देखो 18 लोग भी प्यारा है और 18 जगह भी, 8 की जगह भी प्यारी है। और बात अगर 18 इतिहास री करा तो इतिहास री जकी चीजें हैं बेबी, अपन देखने ने घणो ही मन करे और तेज दुनिया में लोग है जका अठे देखने ने भी आवे, क्योंकि वाने है जकी चीजें हैं जकी चोखी भी घनी लागे। और ये जितनी भी चीजें हैं आने संजो राखे 18 म्यूजियम।

0: मठरा संग्रहालय, और आज को है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, सगला मना रही है हाँ। तो ममता अपन दिमाग में सुनता ही आई बात आवे आपका संग्रहालय के बारे में सुनियो, तो दिमाग में एक ही चीज आई कि इमारता काचरा बक्सा बामे बंद राजा महाराजा री तलवार और सजेड़ा मुकुट है, बे सब अपन याद आ जावे। और ये जो की याद है वासु जुड़िया धरोहर है, ये सामान सब ने संग्रहालय जो को है वो याद रे तौर पर सहज तो मिलियो है, पर एक म्यूजियम जो को सबसे बड़ो है सबसे अनोखो भी है और वो है कठे ना कठे आपनो गांव और एक जीतो जातो जागतो संग्रहालय जको है वो आपा ने कह सका क्योंकि आपनी दादी नानी रे हाथरू बुनियोड़ी जकी दरी है, कोना रे मायने रखेड़ी जकी मिट्टी री कोठी है, पीतल रा बड़ा बर्तन है, खेती रा पुराना औजार है, कुआसु पानी खींचन वाली चरस है, इस सगली चीजा में दादा परदादा रो पसीनो है और अपनी संस्कृति जकी है अब आठे छिपेड़ी है। ये केवल चीजा को नहीं अपनी पुरखरी जकी तकनीक है बा है।
1: बिल्कुल आप कोमल जी बिल्कुल सही बात करी है कि संग्रहालय भले कोई भी तरह रो होवे और संग्रह भले कोई भी तरीके री चीजा रो होवे तो वो अपने इतिहास कला और संस्कृति रो जीवंत केंद्र है। ए अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत ने सहेजन रखे है और अपना जो पूर्वज है बिहारी जो जीवन शैली थी जो कला है थी और जो विज्ञान है तो वे आपते ही पुगावे है। देखो एक आ भी चीज है कि संग्रहालय खाली देखन भूल जावन री चीज नहीं है, संग्रहालय अपन ने खासी चीजा सिखाया करे। एक तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व तो है ही, पण यारो एक संस्कृति रो संरक्षण रो जो काम है ब्याहू आपा शिक्षा अनुसंधान अनशोध रो काम भी आप ले सको हो। दूसरी बात कि जो पर्यटन है और जो अर्थव्यवस्था है बिहार मायने भी यह खूब सहायक है और जो संस्कृति है बिना आप देखा तो और भी समझ में आवेला कि जो पुराना लोग है था या जो गांव है था या जो रहवास है तो वे सामाजिक एकता और समरसता किन तरिया राखता वे सागे रेन भविष्य मायने आगे बढ़न की प्रक्रिया की कर जारी राखता। बिल्कुल तो जो भी संग्रहालय है बिने जद आप देखो तो और जरूर सोच निकल जो कि आज बिन संग्रहालय में आपा कहीं अड़ो विशेष देखियो जो कि आपने भविष्य एक नई सोच रे साथे आगे लेर चाले है।
0: बिल्कुल, तो आपा सब ने मिलर वही संकल्प लेनो चाहिए कि आपने गांव में जकी भी पुरानी पारंपरिक चीजा है वाने संभाल रखो और आवन वाली पीढ़ी वास्ते सहेजो, क्योंकि जका लोग आपरी विरासत ने भूलता जा रहा है वे आपरी विरासत से जुड़ो रहे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सखियों, हर बार इन कार्यक्रम रे मायने माणी एक विशेष कोशिश रहे है कि कोई कोई अड़ी शख्सियत हूँ आपने मिलावा या ब्यारी बात सुनावा जो कि आपारा सबारे मन रमायने एक विशेष भावना एक जोश पैदा करे कि जीवन में आपारे खने जो भी कला है बेने आप आगे तय के कर पहुँचावा और बिन कला ने आपारा जीवन रो मुख्य आधार बना अनकी कर आपा कोई कोई फायदो अपना परिवार ने या अपना समाज ने पहुँचा सका तो इनी सोच ने आगे ले जाता आज अपना स्टूडियो रमायने फोन रे माध्यम से आप एक विशेष कला डिजाइनर जो है सुभद्रा जी अहिर जो कि कच्छ रा जिकड़ी गांव में रहे और खूब बढ़िया कशीदाकारी रो काम कच्छी कशीदाकारी रो काम ए करिया है तो आज सुभद्रा जी सू आपरी बात आप ते पहुंचा वाला सुभद्रा जी री बातचीत जो कि बातचीत करेला कोमल जी कोमल राठौड़ तो पहुंचावा आप ते इन विशेष बातचीत रो अंश
1: किया करे कि कला जो की हुए बा पहचान जी मोहताज कोनी हुए और जद हुनर सुई धागा रे सहारे कपड़ा माथे उतरे तो एक पूरी संस्कृति बोल उठे और एक ऐडी शख्सियत जका सुई धागा रे जरिए आपरी एक अलग पहचान बनाई जका गुजरात रा भुज यानी कच्छ रे जिकड़ी गांव सु आपने साथे फोन रे माध्यम सु जुड़िया है जका आज कच्छ री सदियों पुरानी पारंपरिक हाथरी कशीदाकारी मिरर वर्क और आहिर कला ने देश विदेश ने कोना कोना तक पहुंचा रिया है तो चलो आपने मिलावा ग्रामीण महिला शिल्पकार और उद्यमी सुभद्रा जी सु तो सुभद्रा जी आप रो जोधपुर आकाशवाणी रा एक घनघोर कार्यक्रम में घने है थरकसु स्वागत और राम राम
2: राम राम जी खूब खूब धन्यवाद आपका
1: तो सुभद्रा जी कचरी मिट्टी तो बिया ही रंगा और कलारे वास्ते मशहूर है तो सबसे पहले श्रोतावा ने बताओ कि सुई धागा और इबारी कशीदाकारी सु आप रो रिश्तो है वो कद और किया शुरू हुई और ओ हुनर है आप किर कनु सीखियो
2: हाँ आपने सही बताया कच्छ की कला तो वैसे भी मशहूर है पहले से ही और मैं भी बचपन से ही ऐसे अपने मम्मी या दादी या बड़ी बहनों से ये देखती आ रही थी कला वो सुई और धागों से कुछ अलग अलग नई नई डिजाइने बनाते थे तो शुरुआत में तो मुझे पता नहीं चलता था कि ये क्या बना रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो देखकर फिर धीरे धीरे मुझे जैसे समझ आया तो धीरे धीरे छोटे छोटे टाके पहले सीखे फिर थोड़े बड़े बड़े सीखे ऐसे धीरे धीरे करके मैंने सब टाके अपने मम्मी दादी बहनों से सीखे
1: बिल्कुल और
2: ऐसे ही शुरुआत हुई थी हमारी
1: तो बिल्कुल आज की कच्ची कशीदाकारी है वो जो को आप काम कर रहे हो वो किन तरीका से करियो जावे इनरी जो की विशेषता है बाकाई है
2: ये जो कच्ची कला है वो सुई और धागों से कपड़ों पे अलग अलग रंग से बनाया जाता है और इसमें ज्यादातर उसके ऊपर फूल की डिजाइन है या फिर पोपट की डिजाइन है मोर की डिजाइन है मतलब जो आसपास जो चीजें देखती है हम जैसे डूंगर देखते हैं पानी भरती महिला देखते हैं पोपट देखते हैं जो भी पहले लोग जैसे देखते थे तो वही वही डिजाइन उन्होंने डायरेक्ट कपड़े पर बनाते थे तो आज भी वही डिजाइन चली आ रही है
1: बिल्कुल और आप जका है चीजें बनाया करो तो किन किन तरह की चीजें हैं जो की कला रे माध्यम आप बनाओ
2: हम ज्यादातर चनिया चोली बनाते हैं जैसे हमारे यहाँ गुजरात में नवरात्रि बहुत फेमस है तो नवरात्रि के लिए हम चनिया चोली बनाते हैं फिर ब्लाउज होता है रेगुलर में पहनने के लिए फिर घर को सजाने के लिए तोरण होते हैं चाकड़े होते हैं ओछड़ होते हैं कुशन कवर होते हैं फिर पहनने की चीजों में धोतियाँ धोती होती है केड़िया होता है टोपी होती है उस तरह की चीजें हम बनाते हैं
1: बिल्कुल आप देखो काच और सुई धागा वो काम बनाओ तो हाथरो वो काम भी टाइम तो मांगे धैर्य भी मांगे और जब आप इन्हें साधारण कपड़ा माते और जका बारीक काच लगाओ धागा पिरो तो एक पूरो सूट या के दो या साड़ी या लेंगो कितना दिन में बनर तैयार हो जावे इरमाइन मेहनत है जकी कितनी लागे
2: हाँ भरत काम ये हाथ से बना हुआ होता है तो समय तो बहुत मांगता है

0: है ये, हमें छोटी भी चीज अगर बनानी है तो कम से कम हम 15 दिन तो लग ही जाते हैं, और अगर बड़ी चीज कोई की बात करे, जैसे मुझे चनिया चोली रेडी करना है तो मुझे सिर्फ चनिया में ही 6 महीने देने पड़ते हैं, और फिर उसके ब्लाउज के अलग महीने, 2 महीने उनके लग जाते हैं, दुपट्टा का 1 महीना लग जाता है। तो अगर अच्छे से एक चनिया चोली फुल वर्क वाले बनाने हैं तो घाटा घाटा या मोटा मोटा 1 साल जितना समय लग जाता है।
1: बिल्कुल, काफी समय आपने लाग जावे, मतलब वो है कि इरमाई ने बहुत ही मेहनत आपने देनी पड़े।
0: हाँ जी, मेहनत तो बहुत लगती है इनमें।
1: बिल्कुल, और वो काम आज जी लेवल माते आप कर रिया हो, मैंने देखता देखा कई और महिलाओं ने भी आप सिखाया होला, रोजगार दिया होला, तो आप रे कने कितनी बहना है जो की काम करे?
0: हमारे पास अभी 50 से 60 बहने है जो साथ में मिलकर काम करती है।
1: और जो आप सोशल मीडिया माते भी आज आपकी कला ने पूरी दुनिया देख रही है, तो ये सोशल मीडिया सो आप बिजनेस ने बढ़ावन रे मायने या नयो ग्राहक ढूंढन में आपने कितनी मदद मिली है? कोई बड़ो शहर सु या फिर विदेश सु भी आपरे कने ऑर्डर आवे है की?
0: सोशल मीडिया ने तो हमें इस काम के लिए बहुत मदद की है। शुरुआत में एक भूत के छोटे गाँव से शुरू हुआ था यह सफर, और सोशल मीडिया की वजह से आज हमारी ये कला है जो वो देश विदेश में ये सब लोग देखते हैं, और उसमें जो मोबाइल नंबर या होता है तो वो हमें डायरेक्ट ही संपर्क कर लेते हैं, और हमें ऑर्डर भी मिलता है ज्यादा इनसे, और हमारी कला को मान सम्मान भी मिलता है। तो सोशल मीडिया से हमें एक अलग पहचान मिली है, हमारी कला को एक पहचान मिली है। हाँ जी, पहले हम सिर्फ गुजरात में या आसपास के जो जगह थी वहीं पर ही अपना सामान बेचते थे, और आज तो हम मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, राजस्थान सब जगह पर और देश विदेश में भी हम अपना सामान बेचते हैं। ये जो गांव की कला है वो पूरे विश्व में सोशल मीडिया के जरिए फैल गई है।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया की वजह से फैली भी है, और देखो आपरी आज की कला है इन्हें जीआई टैग भी मिल रहा है, तो इस जीआई टैग से आपरे ये रोजगार ने कई लाभ मिले है?
0: हाँ, हमारी कला तो ये सदियों से आ रही है, पर जब से ये जीआई टैग मिला है उससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस कला को जान रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, इसको पहनना भी पसंद कर रहे हैं। तो जीआई टैग से हमें बहुत फायदा मिला है, हमारी बिक्री में भी बहुत फायदा मिला है इनसे।
1: बिल्कुल, और ये पारंपरिक कला ने जीवित रखने वास्ते कई कई प्रयास आप अबार कर रहे हो, क्योंकि देखो कंप्यूटर मोबाइल रो टेम है अबार, और लड़कियां जकी है बे डिजिटल युग रे हिसाब से और भी कई तरह का काम करे, तो आप रे गाँव रे जकी लड़कियां हैं बे पारंपरिक सुई धागारी कला सीखने में रुचि दिखा रही है कई?
0: हाँ जी, आज की नई पीढ़ी तो मोबाइल कंप्यूटर के दौर में जी रही है, लेकिन हमारे गांव है ना, वो कई लड़कियां आज भी अपनी परंपरागत सुई धागे की कला को सीखने की रुचि दिखा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वे कला को सिर्फ परंपरा से नहीं बल्कि अपनी पहचान और रोजगार के अवसर के रूप में भी वो देखती है। उन्हें यहाँ समझ आता है कि हमारी कच्ची कला का सिर्फ कपड़ा पर किया काम नहीं है, पर महिला उससे आत्मनिर्भर भी बन रही है।
1: बिल्कुल, और कच्ची आज की कशीदा कारी है, आप बहुत भारी भी हुए, घनी भी हुए, तो आप इनमें किन तरह का जो फैब्रिक यानी कपड़ा रो इस्तेमाल करिया करो जो आज की कशीदा कारी सब सुंदर हुए और टिकाऊ भी हुए?
0: हम ज्यादातर जो हमारे आसपास, जैसे हम कच्छ में रहते हैं तो आसपास के गांव में जो हाथ से वर्णन काम होता है, वर्णन काम का कपड़ा ही ज्यादातर यूज करता है जो हाथ से बना हुआ होता है, और या फिर एकदम प्योर कॉटन यूज करते हैं जिससे हमारा जो काम है वो लंबे समय तक टिका रहे, क्योंकि हमें 1 साल तक एक ही कपड़े में बार बार सुई करनी पड़ती है, तो अगर कमजोर कपड़ा हुआ तो सुई मारने से ही वो फट जाता है या टूट जाता है।
1: बिल्कुल,
0: पर हमें भरत काम के लिए थोड़ा सा मोटा कपड़ा चाहिए, एकदम पतले कपड़े पर नहीं बन पाता ये काम, इसलिए कपड़ा हम बहुत ही अच्छा देखते हैं कि ज्यादातर हाथ से बनाया हुआ हो या फिर मोटा हो, और जिसका कलर ना निकले वो चीजें हम बहुत ध्यान रखते हैं इनमें।
1: बिल्कुल, और अपना जितना भी श्रोता है इन टाइम रेडियो सुन रहा है और हाथ से कशीदा करी करेड़ा कपड़ा पहनना पसंद करे, तो वाने आप काई सलाह देनी चाहो कि बे हैंडमेड कपड़ा रो जो को सार संभाल है बे किया कर सके ताकि वारी चमक है जो की सालों साल बने डी रहे?
0: हैंडमेड का जो कपड़ा होता है उसमें अलग अलग धागे यूज किए होते हैं, ज्यादातर हम जो भी कस्टमर खरीदते हैं उसको वही बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ड्राई क्लीन ही करें, क्योंकि जो पुराने पैच लगाए हुए होते हैं कपड़े जो, तो उसमें कोई अगर एक भी धागा का कलर छूटता है तो पूरा पीस खराब हो जाता है वो। अभी तो हम जो नए आइटम बनाते हैं उसमें उस तरह के

0: के धागे यूज करते हैं कि उसका कलर ना छूटे या मिरर उसका सालों साल तक खराब ना हो. पर सबसे पहले तो हम ड्राई क्लीन का ही उनको कहते हैं. पर अभी जो आइटम नहीं बनाते हैं उसको हम नॉर्मल पानी से धो सकते हैं बिना शैम्पू या सिर्फ पानी से या मशीन वॉश का भी मना करते हैं. आप नॉर्मल पानी से धोइए और फिर बिना धूप के ऐसे घर में या पंखे के नीचे आप सुखा देते हैं उसका ज्यादा समय तक वो टिका रहता है.
1: आपरे बट कचरे महीने हर साल रण उत्सव भी हुए तो विन टाइम आपरा काम और बिक्री में कितो कुछ आले जो को देखने मिले.
0: कच्छ में होने वाला जो रण उत्सव है वो हमारे लिए बहुत खास समय होता है. इस दौरान देश विदेश में हजारों पर्यटन कच्छ में संस्कृति संगीत और हस्तकला की परंपरा को देखने आते हैं और उनमें से कई लोग हमारे गांव झिकड़ी में भी पहुंचते हैं. यहाँ पर्यटन जो गांव में है होता है हाथ का जो होता है हस्तकला वो अपनी आंखों से देखना पसंद करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में तो उन्होंने वो देखा होता है और अपने आंखों से जो देखते हैं तो उसको बहुत ही अलग अनुभव होता है क्योंकि हाथ से बनाया हुआ वो कई लोग सीखने भी आते हैं. जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर सीखने भी आते हैं और कुछ दिन यहाँ रुकते हैं और अलग अलग कहाँ के जो होते हैं वो सीखते हैं और अपने जो कि फिर वो है कोर्स है उसमें वोटाको का वो इस्तेमाल करते हैं. ऐसी भी सीजन में कुछ कुछ कस्टमर आते हैं यहाँ घूमने आते हैं देखने आते हैं. पर रण उत्सव के समय में यहाँ कच्छ में टूरिस्ट की संख्या बहुत बढ़ जाती है तो हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग आते हैं तो उससे हमारी बिक्री में भी बहुत फायदा होता है.
1: बिल्कुल. और आप रही काम ने इतनी ऊंचाइयां तक लेर आप गया हो इंद्रे वास्ते आपने कई सम्मान और पुरस्कार भी आपने मिला वेला.
0: हमें बेस्ट डिस्प्ले का अवार्ड मिला है यहाँ बाकी गवर्नमेंट की वजह तो नहीं मिला है अभी तक. हाँ जी. पर जो आसपास के विस्तार से होते हैं कला को लेकर पुरस्कार तो वो मिले हैं हमें.
1: तो बिल्कुल आपरी मेहनत ने देखता था का आपने एक दिन जरूर बड़ा बड़ा पुरस्कार मिलेला. आपरी मेहनत है जो कि यही जारी रख जो. तो सुभद्रा जी आप चलता चलता आकाशवाणी रा श्रोतावा ने और महिला ने जो कि आपरा हुनर ने खुदरी पहचान बनानी चाहे वाने आप काय कहनी चाहोला.
0: बस मैं तो यही कहूंगी कि अगर आगे बढ़ना हो तो अपने घर से अपने गांव से भी आगे बढ़ा जा सकता है क्योंकि हमारे पास भी आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था. अगर पहचान बनानी हो या कुछ करना हो तो हम गांव से भी कर सकते हैं. हमारे पास भी शुरुआत में कुछ नहीं था सिर्फ हमारी ये कला थी. पर हमने ये सोचा कि इस कला जो हमें इतनी पसंद आ रही है वो दूसरे लोगों को भी ये इतनी पसंद आएगी तो धीरे धीरे इनका फोटो हमने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया. कहीं कस्टम ऑर्डर भी आते हैं अभी और बड़े बड़े भी ऑर्डर आते हैं तो हमारा ये रोजगार चलता है. हमारा 50-60 बहनों का जो ग्रुप है उसका काम इस भरतकला से ही चलता है तो शुरुआत कहीं से भी हम कर सकते हैं.
1: तो बिल्कुल सुभद्रा जी आपकी बात सुनकर आप लोग काम देकर यहाँ लागे कि अगर इरादा मजबूत हुए तो सुईरी नोक धागा रा एक टुकड़ा सुभी अपनी तकदीर रा खूबसूरत लिबास आपा बुन सका हा. तो सुभद्रा जी आप बहुत बहुत आभार की आज आपरे हुनर री आपरे सफर री आत्मनिर्भरता री कहानी सभा तक पहुंचाई आप सुसी क्लेयर बहुत सा लोग भी सफलता री सीढ़ी चढ़ेला और आगे भी बढ़ेला. तो आज आप रो कीमती भगत निकाल आकाशवाणी सु जुड़िया इंद्रे वास्ते पूरा आकाशवाणी परिवार की तरफ सुभद्रा जी आप रो बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
2: तो सखियों आप आभार सुन रहा था कच्छी कशीदाकार सुभद्रा अहिर जी हूँ कोमल राठौड़ री बातचीत और अब है आप ते पुगावा और मीठो सुगीत.

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो ममता जी, आपने पता है आज जो चुको दिन है वो अपने वास्ते बहुत ही गौरव रो दिन है, क्योंकि आज 18 मई और पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस है जो भी आज मनावा, क्योंकि आज रे दिन ही आपनों जो को पहलो परमाणु परीक्षण है वो करियो गयो, जिन्हें आप पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस के रूप में जाना ही हा। और इन दिन है जो को गुप्त मिशन रो जो को कोड नेम हो वो हो स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि भी दिन ही जो को बुद्ध पूर्णिमा ही। और ये परीक्षण ने अपनो देश से जो को शांतिपूर्ण परमाणु धमाकों कियो, क्योंकि ये परमाणु री जो की ताकत और उपयोग है वो लड़ाई सारू को नहीं हो बल्कि विज्ञान और तरक्की खातिर करना हो। और इन दिन सो ही भारत है जो को दुनिया रो छठो देश बन गयो जो को परमाणु ताकत सो संबंध हुआ करे। और जैसलमेर जिला री जो की पोखरण सो करीब 140 किलोमीटर दूर लोहार की गांव रे कन्ने एक सुखो कुओ हो जिर माइने परीक्षण करियो गयो। और वो इलाको जो को है वो आबादी सु घनो दूर हो और अठरी जो की रेत ही बा माटी परमाणु रेडिएशन ने आपने रोकन रे सारू काफी मददगार भी साबित हुई। और ये धमाके सु जमीन में एक मोटो जो को खाडो पड़ियो हो वो आज भी अठे आपने देखने मिल जावे। और ई मिशन ने करीब 75 वैज्ञानिक री जकी टीम ही बा दिन रात काम करर पूरो करियो।
3: जी बिल्कुल। और देखो यूं भी कहवे के शांति रे खातर शक्ति होनी भी जरूरी है, और जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति या देश शांति रे तरफ बढ़े तो विनो जो महत्व है वो बढ़ जाया करे। तो एक और दिन भी है कोमल जी आज, और वो है विश्व एड्स टीका।

0: का दिवस।
1: बिल्कुल,
0: तो आज रो जो दिन है वो पूरी दुनिया रे मायने विश्व एड्स टीका दिवस रूप में भी मनाया जावे है। और जब भी इन बीमारी रो नाम आपे सुनो तो कई बार जो लोग है वे झिझक जावे, पर आज रो जो वैज्ञानिक युग है फिर मायने सही जानकारी ही आपनो सबसे बड़ो बचाव है। और आज भी देखो के कई जगह माथे इतो ज्ञान और जानकारी रे अभाव रे कारण लोग जो है खुलन बात नहीं कर पावे इन मुद्दा पर, क्योंकि यार मन में थोड़ी सी कोई तरह की भ्रांति भी है, झिझक भी है। पर देखो चाहे गांवरी चौपाल हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, हर जगह इन पर खुलर सही वैज्ञानिक जानकारी के साथ बात होनी चाहिए। बस इन खातर जो सोच है या जो जागरूकता है वह बढ़ाने खातर ही आप इन तरह रा दिनों रो प्रचार प्रसार करिया करो और कोशिश करिया करो कि जो भी तरह की भ्रांतियां हैं।

0: जो है वो खुलन बात नहीं कर पावे इन मुद्दा पर, क्योंकि अब यार मन में थोड़ी सी कोई तरह की भ्रांति भी है, झिझक भी है। पर देखो चाहे गांव री चौपाल हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, हर जगह इन पर खुलर सही वैज्ञानिक जानकारी के साथ बात होनी चाहिए। बस इन खातर जो सोच है या जो जागरूकता है वह बढ़ाने खातर ही आप इन तरह रा दिनों रो प्रचार प्रसार करिया करो और कोशिश करिया करो कि जो भी तरह की भ्रांतियां हैं वे लोगों मायनू हट जावे और लोग एक सही ज्ञान और शिक्षा रह सागे समाज मायने आगे बढ़े।
1: बिल्कुल, और भी जानकारी आप तक पहुंचा लाओ। सुना वहां आपने एक और प्यारो सुख गीत।

देखो कोमल जी, आज अपन इन कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने बात करी थी कि अधिक मास शुरू हो गया है, तो हर बार अधिक मास रे मायने आपने अठे एक विशेष परिक्रमा रो आयोजन होया करे, जिन्हें की मारवाड़ रो कुंभरी उपमा मिलोड़ी है। तो आज इन खास परिक्रमा रे बारे में अपनी सखिया ने बतावला, अधिक मास रे मायने जो कि आप काल सुन कह रहा हो कि लागू हो गयो है अधिक मास, तो हर अधिक मास रे मायने मारवाड़ रो कुंभ है बिनी शुरुआत होया करे, जो कि अब की बार 25 तारीख को होवेला और 25 तारीख रे आड़े पाड़े ही नौ तपेरे भी शुरुआत हो रही है। तो ओ जो समय है वो खूब ताप पड़ेला इन धरती पर, और एड़े ताप रे मायने भोगी शैल परिक्रमा जिन्हें आप कहवा, तो आ परिक्रमा रो आयोजन करी जिला। इन परिक्रमा रो आ मान्यता है

0: जो भोगीशल पर्वत है वह हिमालय रा पुत्र हा और इन खातर अगर यारी परिक्रमा करो तो बिल्कुल वह हिमालय री परिक्रमा रे बराबर मानी जे है। तो इन खातर जो भक्तगण है वह भोगीशल परिक्रमा करिया करे और खूब कहवे की जो इन ताप रामायण इन परिक्रमा ने पूरी करनी खूब अग्रो काम है, खूब मुश्किल है क्योंकि देखो ओ तो ताप पड़े और ऊपर जो पथरीलो रस्तो है बिन खातर पूरी तरह जो अपना जो भक्तगण होवे या जो श्रद्धालु होवे भी आने थोड़ी कष्ट रो सामना करनो पड़े। पर और जरूर जानना चाहिए कि आ जो परिक्रमा है ना पूरा पथ पर अलग अलग तरह की जो सुविधाओं है व्यवस्थाओं है बियारो भी बिल्कुल ध्यान रखी जाए कि जगह जगह जो पड़ाव है ब्या पर जो श्रद्धालु है बियाने टेंट री व्यवस्था पेयजल री व्यवस्था और जो अलग अलग मंदिर है जो कि रातानाड़ा गणेश मंदिर शुरू होवेला तो पूरे रस्ते रमायने यार वास्ते अलग अलग तरह की सुविधाओं रो भी आयोजन करिया करे।
1: बिल्कुल और ममता जी रो जो को आयोजन है वो इस बार काफी बड़ो होने वालो है क्योंकि ये यात्रा री जकी शुरुआत ही बा हुई ही 1926 ने 20 फरवरी ने तो इस बार मतलब ठीक 100 साल जका है बेहुक्या है तो ये यात्रा रो शताब्दी वर्ष कहवे जिन्हें घनी धूमधाम से इस बार मनायो जाए और ये जकी यात्रा री शुरुआत घंटाघर में कार्यालय सु भगवा झंडो फेराउन रे साथ ही तीजा माझी मंदिर में संता रे हाथ सु है पूजा रे साथ हुआ करे और जका पड़ाव री आप बात करी वे पड़ाव सात पड़ाव रिया करे जिया की गणेश मंदिर आप बतायो पचे चौपासनी बडली क्षेत्र बैजनाथ महादेव मंदिर बेरी गंगा मंडोर उद्यान संतोषी माता और पचे गंगा श्याम जी मंदिर में महाआरती रे साथ ही यात्रा रो जो को संपन्न है वो हो जाया करे।
0: बिल्कुल तो आप भी इन यात्रा रो बिल्कुल आनंद उठा सको पर ओ है कि थोड़ी सावधानी रखनी भी जरूरी है। जो लोग पैदल चल सके बयान बिल्कुल पैदल यात्रा करनी चाहिए अन्यथा आप जो भी सुविधा रो उपयोग करो बिनो भी इन परिक्रमा ने आप पूरी कर सको हो।

0: और ममता जी देखो गर्मी चल रही है तो गर्मी रे मायने सब रोमन करे कि आपा कुछ ठंडो ठंडो खावा कुछ ठंडो ठंडो पीवा मन है जो को शांत हो जावे पर कितो भी कर लो चाहे ठंडो तो खावा है लेकिन कठे न कठे अपन मनो कर करी कि आपा चटपटो भी खावा अपन ठंडो और मीठो कितनी देर खाता रहे खट्टो मीठो वो भी मन करी चटो चटपटो चटपटो कुछ खावा और पर चटपटा को नाम लेते ही फास्ट फूड है जका याद आवे पर एक खराब फास्ट फूड शरीर में खासी कमजोरी भी कर देवे थकान भी महसूस करावे शरीर में कई रोग है धीरे धीरे पैदा कर देवे तो अगर आपा दिन की शुरुआत एक ऊर्जा भरपूर कोई खान पान करा जो कि सेहतमंद भी रहे और चटपटी भी है जो कि अपन मन है जो को मन में भी नहीं रहे चटपटो भी खाला तो आपा कलेवा में ऐडी चीज लेवा जो कि प्रोटीन से भरपूर हुए कमजोरी भी कौन लगे और थकान भी महसूस कौन हुए तो इन वास्ते आप काला चना है जका आप भिगो रख दो रात को क्योंकि आयरन भी हुए प्रोटीन भी हुए और पावर हाउस है जो को अपन बोल सका फाइबर से भरपूर भी आने बोलिया करे तो आने भिजो पहली पानी में नमक भी डाल दो ताकि चना में जगह फीका नहीं लगे और पछे सुबह आप एक बारीक कटेड़ो प्याज ले लो एक बारीक कटेड़ो उबलेड़ो आलू ले लो थोड़ा सो ले लो नींबू का रस थोड़ा सो चाट मसालो स्वाद अनुसार कालो नमक भी रमाइन डाल दो और अनारा दाना दो बड़ा चम्मच ले लो और सब आने अच्छी तरह से मिक्स कर ऊपर सो बारीक कटेड़ो धनियो डालर आप इन्हें खा सको जो कि आपके सेहत रे वास्ते भी काफी फायदेमंद रही जिमें तेल भी कौन पड़े और गर्मी में भी फायदेमंद रहे
1: आप जब बात करी नी तो मैं जब स्कूल में पढ़ती कोमल जी तो हमारी जो स्कूल है बटे खन एक छोटी सी दुकान है थी तो उन टाइम रहा तो इतनी चीजों मिलती कोई नहीं दुकान में तो कोई बिस्किट मिलता कोई कुरकुरे दूसरी कोई चीज खाने पीने मिलती पर ओ है और जो आप नाश्तो बताओ नी और बिल्कुल मिलतो और भीड़ इतनी पड़ती कि अगर आप 5 मिनट लेट हो गया नी तो लाइन में खड़ा ही रहता आते नहीं आता बेचना तो चलो एड़ो ही चटपटो एक गीत भी ले आया था अपने वास्ते

ग्रामीण महिलाएं अभी सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और एफएम सनसिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्टुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, ऑप्टिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीत आकाशवाणी न्यूज़, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: यान वडसेरी

0: സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും.
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं. इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं. नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं. शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी. इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी. राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है. राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे. एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है. ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है. ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है. ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी. मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है. केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती.
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी.
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री

0: क्षेत्र को एक उज्जवल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये मीठा सा गीत हलाकू फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानियां फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

मोहब्बत की ये खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

तुम भी जलोगे हाथ मल।

0: दिल लेकर मीठा से गम का ये तोहफा देने वाला गीत आपने सुना फागुन फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में कमर जलाल आबादी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं नई दिल्ली फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज है, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर।

0: मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए।
1: आइए सदाबहार नगमे का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास के बोल है एस एन त्रिपाठी की धुन। फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

जीवन की वीणा पर बसता रहे यू ही मीठा मीठा प्राणों का राग और जीवन में छाई रहे बहार, इसी संदेश के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली है।
4: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजीरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
3: बिल्कुल।
4: नमस्कार मंजीरी का भी।
3: हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और साथ में हमारी जो सखिया हमें सखा भाई सुन रहे हैं उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग
4: मुद्दत हो गई
3: जमाने गुजर गए, आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था। मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देख कर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
4: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या क्या खास बातें हैं?
3: भाई, खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
4: क्या बात है?
3: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट और छेना दही बड़ा।
4: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
3: पहले ही कर दिया। और मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी, आपने बोला था। मुझे याद है, तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजू जी कोई चीज मुझे एक दे देंगी तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएंगी, पिलाने खिलाने की। तो चलिए, ये तो हो गई बात है हमारी व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
4: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है। क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं।
3: हाँ जी।
4: और तो, आज एक खास दिन भी है
3: जी।
4: खास एक क्यों, दो खास दिन है। हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
3: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कथा सुधा लेकर हम आए हैं, तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
4: बड़ी मजेदार कहानी है।
3: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। लेकिन उससे पहले राजुल जी, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
4: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत, तेरे मेरे सपने फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और भाई तुमने शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी,
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की, जुदा ना होने की, और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल, तो कथा सुधा जो हम आज सुनाएंगे तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पालो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत

0: बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
2: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
3: देहात की बकरी है, यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
2: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहाँ, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक गाछी एक तरफ से आ निकला,
4: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता।
2: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
4: चलिए मैं रख देता हूँ।
2: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
2: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रे चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक ना था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार मेमे का निरंतर स्वर आकर कान के पर्दे को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं, बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होऊंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी।

उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती। और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांधकर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेटकर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। ला हौल विला कुव्वत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐठन उसे छुड़ाया। 1 घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुरे जाते थे और जी जल रहा था वो अलग। ये तरकीब और भी तकलीफ दे साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदी है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या था चुप। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा। देख

0: जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रख कर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं। सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हाँ, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
1: कौन कौन है? कौन है रे? कहां से पत्तियां तोड़े लाता है? कौन है?
0: मुझे मालूम हुआ, नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया, मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
2: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए? जीना मुहाल किए देती है ये। घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
0: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकाल कर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे, और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
2: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
0: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले, कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
3: हुजूर, 8 आने बकरी मिलते हैं।
0: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
3: मरका ही है क्या बाबूजी?
0: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
3: अभी तो दूध देती है।
0: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
3: दूध आपके घर पहुँच जाया करेगा बाबूजी।
0: तुम्हारी महर

0: मेहरबानी।
1: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। एक हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी। यहां तक कि एक महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काछी के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में एक बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दोगुना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी दो बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
2: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत।
2: जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
0: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
2: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
0: चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिया ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
1: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: देवी जी ने कहा,
2: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
0: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गडरिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
5: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इसके बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए क्योंकि कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
2: है। जी बिल्कुल, और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है और समय समय पर HIV की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही HIV एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय HIV वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले इस बात की कोशिश करता है और स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके HIV के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी बल देता है।
2: जी, और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा, स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं। तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारियां।
0: हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र, पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किमखाप कैसा चलता था, मलमल कैसा होता था, ये सब देखने को मिलता है। बड़ा अच्छा लगता है,
1: बहुत अच्छा लगता है। वजनदार चीजें जो दिखती है, ढाल, तलवार, ये सब वजन कैसे वो लेके चलते होंगे, हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको संरक्षित करने के उपाय करें, और जागरूक भी रहें, और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो है वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो, देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित है, फिर भी हम उस

0: शीशे पर बार बार हाथ लगाते हैं,
1: वो सब नहीं करना चाहिए।
0: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
1: रिंग लगी रहती है,
0: डोरी लगी जिससे कि बाधा रहे ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब पुराने बहुत समय से संजो कर रखा गया है, इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
1: सही बात है। और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स।
0: कई संग्रहालयों में शोज भी होते हैं
1: जी,
0: कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा।
1: करीब पहुंच जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते हैं, है ना।
0: तो चलिए हम करीब पहुंच रहे हैं
1: गीत के।
0: गीत के

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं। पहले स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं।
1: हाँ,
0: बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देशी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेब बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी मछली, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक,

0: चाट मसाला, इमली की चटनी या थोड़ा सा गुड़ चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन, सेव, पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं। और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है।
0: तो बस आप
1: ये मिठाई है नमकीन,
0: ये तो आप पढ़ेंगे
1: अभी पता लग जाएगा। तो भाई छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताजा छेना या पनीर ले लीजिए, दो बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, एक बड़ा चम्मच मैदा, एक चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, दो कप ताजा दही हो, उसमें दो तीन बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकालकर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो वो फट जाएंगे। और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और खास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दिल की ये बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपनी बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: जो मोबाइल शरारतें
1: कर देता है। तो बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक आपसी तनाव होता है,
0: झुंझलाहट
1: होती है कि अरे यार खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने के समय मोबाइल चलाइए।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसर्जन।
1: और एक साथी लिखती है कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है। साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर होती थी, हंसी बांटी जाती थी, अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
1: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहां तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती है। इसे हम नजरअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण घर के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़ कर रखता था,
0: एक डोर में बांधे रहता था।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहां डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे, टाइम नहीं लगा रहेगा।
0: ये समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही है और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए, तो मोबाइल में की भूमिका को जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आशर की क्या बात है। हाँ ये बात तो होती है ना कि सोते समय भी कोई ये देख रहा है, तो जबकि सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूरी बरतना अच्छा रहता है।
1: हाँ बेड से आप दूर ही रखिए, मोबाइल मेज पर रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहुओं और बेटों की तू तू मैं कभी ना कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा की मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे जरूरी है कि आप मोबाइल को दूरी रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का बातें करने का तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफी चीजों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं, आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है, लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल, और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूंगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत जरूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना जरूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज का जो एक्टिविटीज है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में जरूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं?
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते हैं, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
0: जी।
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
0: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
0: जिसमें आम भाषा में या गांव में कहीं इसको कठोर कहा जाता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में, जैसे मैं बताए, दो चीजें साथ में ले ले तो ये कम्प्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
0: अच्छा,
1: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कम्प्लीट प्रोटीन बन जाता है क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं। तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
0: अच्छा,
1: तो पहला अगर मैं देखूं तो दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है, और तीसरा है जो मेरे कड़धानिया है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह।

0: अनाज के साथ?
1: बिल्कुल
0: जी जी।
1: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे। जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी ये सारा आ जाता है। ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं। भले दूध और इसकी जो
0: सिमिलरिटी है,
1: हाँ, जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
1: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से
0: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों, डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले, हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की जहां तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40 वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का जमाना है और ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध वैसे दूध वाली चीजें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदे मार्केट से तब सिर्फ पैकेट आजकल

0: पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट में सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए.
1: अच्छा.
0: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है. तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है. तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज घर पे ही बना सकते हैं. और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा. अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है.
1: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
0: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज्यादा बेहतर बन जाता है. उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है. तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं. सिर्फ एक चीज गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं.
1: अच्छा.
0: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते. तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाप देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं.
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई. अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है कई बार, ये मिथ है या सच है, कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
0: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है. लेकिन ये बात सच है जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं. अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा. तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है. हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहां पे प्रोटीन नुकसान करता है.
1: वो कौन सी हैं?
0: जैसे किडनी के डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए. उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है. बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है.
1: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
0: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच. क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है. जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती है जहां पे उनकी किडनियां काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है, तब ये प्रॉब्लम आता है. पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको. जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज परहेज नहीं करनी है.
1: प्रोटीन ले सकते हैं?
0: बिल्कुल ले सकते हैं, और जरूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना जरूरी है वो उतना प्रोटीन खाए. जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज्यादा नुकसान होगा. उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से. जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे, इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है. जो हम बोलते हैं कि
1: बीज वाले बंद कर दीजिए, टमाटर बंद कर दीजिए,
0: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है. तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है. क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है.
1: जी जी, व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है.
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है.
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई. तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
0: ये वादा रहा मूवी से ये वादा रहा
1: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपको। ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था। हम सुनो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
2: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है। वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो।
1: अच्छा।
2: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि इतना सारा पचा नहीं पाएगा और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
1: हैवी हो जाएगा,
2: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक ग्लास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं तो वो पॉसिबल भी है और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा। शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके होती है।
1: जी जी जी, तो इसका मतलब ये प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
2: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
1: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें, तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
2: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं

0: स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीजें खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली, तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना।
1: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप।
0: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी जरूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे प्रोटीन कम करने की जरूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है, तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहां पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेस जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
1: सीरम क्रिएटिनिन,
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहां पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। पर अगेन, बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहां पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड के फॉर्म में भी लिया जा सकता है,
1: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
0: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से, आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व, और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: यस, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है, लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए, और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो, अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत

0: इंटेंसिव वॉक में रहते हैं पैटर्न में. एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए. तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है.
1: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
0: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन और अलग अलग सोर्सेस है. और ऐसे जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा. हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है,
1: जैसे
0: फल हो गए, जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन होते हैं. ठीक है, आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है. भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है. खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी. अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा. अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा. ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए. जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है. इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है, क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है. वो जो रीजन है प्रोटीन खाने का, वो रीजन नहीं हो पाता है कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है. तो ये सारे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पोर्टेंट हो जाती है. और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं. नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है. तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज्यादा विटामिन होते हैं. जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है.
1: जैसे ऑरेंज है,
0: जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है. मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है. और अगर मैं सब्जियां लूं तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो. अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें. जितनी ज्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं. वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं. क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है. वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं. तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी, बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स आप
1: ग्रहण करना है. बराबर है. तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहत नामक कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल मूवी से
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना.

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहां से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमजोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: धुंधलापन
1: वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेज है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी जी।
1: दूसरा विटामिन जो बहुत जरूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
0: इसका क्या काम होता है?
1: ये जरूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत, और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज बन जाती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे। तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है, ये मेजर सोर्सेस है। इसके अलावा भी काफी सारे हैं बट ये तो ज्यादा जरूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है,
0: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
1: जी, और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है। तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
0: हैं,
1: नींबू, मौसम्बी,

0: पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है. सब्जियों में भी 1% ऑफ विटामिन सी होता है. अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है. इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची,
1: ओहो,
0: मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी
1: हरी
0: होता है,
1: मिर्च।
0: हरी मिर्च में. तो ये चीजें है हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे.
1: जी। और देखिए, आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
0: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या ना दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए.
1: अच्छा,
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे मैंने बताया, वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है. और रही बात फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे हैं या हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं. जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीजन से या कारण से जरूरत से ज्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं. वो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज, नट्स हो गया, जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है. पर जब आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा. तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है. इसके लिए हम बोलते हैं कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज कभी नहीं खानी चाहिए. हर चीज रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्जी रोटेशन पे रखो. जितना आप उसे अलग अलग चीजें खाएंगे अलग अलग समय पे, उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे.
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
0: इश्क बुलावा, हंसी तो फंसी, पिक्चर से.

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज, तो आप चावल ले लीजिए या गेहूं ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो, ठीक है। कड़धान्य, जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है, तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तीसरा है आपकी सब्जियां,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है,
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, बट ये जरूरी है, इसमें विटामिन भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ, और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पानी, जिसे हम ज्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीजें, पांचों चीजें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरीज ले लो, या आजकल मॉडर्न जमाना है, पास्ताज एंड पिज्जाज का जमाना है, तो वो पास्ताज एंड पिज्जाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे,
0: कितनी हमें आवश्यकता है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही है, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत जरूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे, तो ये हमें ज्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज्यादा जरूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज, उनके लिए ये चीज बहुत काम करती है, उनके लिए भी ये चीज बहुत काम की है जिनको वजन कम करना है
0: जी,
1: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत जरूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी जरूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है, तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीजें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए।

0: तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, मेरा पेट भर देगा तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं, वो अपना आहार लेते हैं तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
0: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं है। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की जरूरत है, पर अगर आप ठीक हो,
1: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है,
0: तो मिलना जरूरी है, एक बार मिलना जरूरी है। आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफी बार हम चीजें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फायदा कर रहा है, या ये चीजें हम अवॉइड कर दे रहे। जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। और
1: या फिर वो बिना मलाई का दूध,
0: एग्जैक्टली, अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीजें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना जरूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है। वो इंटरनेट से पड़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज का नॉलेज है, उस चीज की इन्फॉर्मेशन रहती है।
1: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
0: बिल्कुल
1: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
1: उसकी प्रकृति अलग होती है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीजें चेंज हो जाती है। आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशन अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी जरूरतें अलग हैं, वो एक चीज पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीजें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीजें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन अगर हमें चाहिए कि हम रोज खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन आ जाएंगे। रोज दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इम्पोर्टेंस होता
1: है। जैसे गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
0: आम, गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डायटिशियन की सलाह लगेगी ही, बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीजन है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीजन छोड़ के अगर ठंडी की सीजन में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज करूंगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज तो कम से कम रखनी है। एक से ज्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी जरूरत पूरी होगी, तब तक हमारी जरूरत नहीं पूरी होने वाली है।
1: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट है, विटामिन्स इम्पोर्टेंट है, सोर्सेज इम्पोर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की जरूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीजों में एक चीज रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीजें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले ये भी जरूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे

बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है. और रही बात कुछ ये बोलते हैं कि दो दो घंटे पे लेना चाहिए, तो दो दो घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है. हाँ, लेकिन दो दो घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है. स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू.

0: भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए. तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो, बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा. और जो हमें चीजें, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीजें चाहिए, वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है.
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया आज के इस कार्यक्रम में. हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं.
0: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से. आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व. आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा. और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को. नमस्कार.

यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। श्रोताओं, आप सुनेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो जी, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों. जी हाँ, स्वागत है आपका कार्यक्रम युगवाणी में. दोस्तों, आज की शाम जो है वो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की शाम फरमाइशों का नाम, वो गीत जिन्हें सुनकर दिल मुस्कुराए और वो तराने जो किसी की याद दिलाए. जी हाँ, आज जो है दिल की डायरी खोलिए और अपने पसंद का वो प्यारा सा गाना चुनिए और भेज दीजिए हमें. कहाँ और कैसे वो बताएंगे हम आपको थोड़ी सी देर में. दोस्तों, आज के शाम में हम दो रेडियो बड़ीज आपके साथ जुड़े हैं. मैं आपके रेडियो साथी प्रज्ञा अग्रवाल
1: और इस आवाज का नाम राहुल. और आज मंडे की शाम फरमाइशों का पिटारा खुलने वाला है, तो अगर आप भी अपनी फरमाइश का अपना मनपसंद गीत कोई सुनना चाहते हैं तो हमें मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. अब कहाँ कर सकते हैं उसकी बात भी बताएंगे आपको पूरी, लेकिन उससे पहले आज की शाम का ये पहला म्यूजिकल ट्रैक एंजॉय करेंगे.

0: 9413293599। जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9413293599। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी फरमाइश का कोई भी गीत, उस फिल्म का नाम, उस गीत का नाम लिखकर भेज सकते हैं। हम सुनाएंगे आपको आप ही की फरमाइश के गाने, और हमारे एक मेल एड्रेस भी है, उस पर भी आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं, जो कि है yuvapersonjodhpur@gmail.com।
1: तो दोस्तों हम इंतजार कर रहे हैं आपकी फरमाइशों का, आइए सुनवाते हैं आपको।

0: दोस्तों, इस फरमाइशी शाम में पहली फरमाइश हमारे पास आ पहुंची है हनुमान मंदिर रोड से अनिल गौरव मानसी कविता अरोड़ा की, वहीं छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा की।
1: वहीं साथ ही साथ अगली फरमाइश आई है श्रॉफ रोड राजकोट से प्रेमा रानी जाटव डॉली और सुरेश डोकर। गंजडू वारा से आई है मास्टर फरहत शेख, चमनपुरा मौरबी से प्रमिला जेटली दीपक और आशु जेटली की तरफ से। वहीं साथ ही साथ बिहार स्टेट डुमराव से आई है वलीउल्लाह अंसारी, छत्तीसगढ़ से है प्रभा जयपुरिया और गौरैया जानंद से है अशोक जाटव। आप और मिलकर एंजॉय करते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

0: अदनान सामी का ये खूबसूरत सा म्यूजिकल ट्रैक आपने एंजॉय किया। प्रोग्राम युवानी इस वक्त चल रहा है, युवा पसंद फरमाइशी प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं इस आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं
1: प्रज्ञा।
0: और आज की जो अगली फरमाइश है वो बिल्कुल बता देते हैं, फरमाइश का पिटारा खुल चुका है और अगली फरमाइश में है सीमांतर पार कर राजकोट से एस के मुची, संगीत कुमार वाणी कुमारी और विरमपुर गुजरात से है अर्जिता कुमारी, सोनाली कौर, ज्योति और संदीप कौर।
1: वहीं खेतेश्वर कृषि फार्म से है नाग सिंह राज पुरोहित। वहीं मुंबई से आई है अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदव, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले। वहीं दिल्ली से आई है आमना नसरीन बागवान, आसमा परी राबिया और आशु अहमद फुलवाले की तरफ से।
0: साथ ही साथ हरियाणा से है अंकित कागड़ा, मोनी कागड़ा, प्रिंस बूट, सीताराम कागड़ा, साहिल कागड़ा और मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से है शेख जियाउर रहमान, शेख उताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान की तरफ से।
1: वहीं जोधपुर से आई है छेलाराम मेघवाल, रविंद्र, देवेंद्र, अनीता और फूली देवी मेघवाल की तरफ से।
0: धनौरी तेलीवाड़ा से है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया और आयान बाबू की तरफ से। आइए आप और मिलकर सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा गीत।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: एनसीपीसीआर आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों, आज किस फरमाइशी शाह में अगली फरमाइश आ पहुंची है महाराष्ट्र से, शंकर लाल गणेश लाल शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जयसाल की तरफ से। वहीं लूणी से आई है अलादीन धुंदेश्वरी की तरफ से।
1: फरमाइश का सिलसिला जारी है, पिटारा खुल चुका है और अगली फरमाइश भी बिल्कुल हमारे सामने है। बता देते हैं आपको, कबीर रेडियो श्रोता संघ टोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से है देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बीबी, पूजा तामूरिया, राधिका और प्रभा देवी तामूरिया और वहीं साथ ही साथ मास्टर अल कबीर की तरफ से।
0: वहीं हनुमानगढ़ से आई है रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान की तरफ से।
1: किकिर मेटा बेलहारी पाटन दुर्ग से है संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा की तरफ से।
0: वहीं जलालाबाद वेस्ट से आई है सुरेश, पूनम, विशाल प्रिया, दशानी और निमित आहुजा की तरफ से।
1: अगली फरमाइश है बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना।

0: वेलकम बैक जी आपका एक बार फिर से इस वक्त प्रोग्राम यमुनी को एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं
1: आपके रेडियो साथी प्रज्ञा अग्रवाल।
0: मंडे का दिन है और फरमाइशों का पिटारा खुल चुका है, तो अगली फरमाइश कौन सी बता दीजिए।
1: अगली फरमाइश आई है जफराबाद से। सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, संचित प्रथमेश प्रणाली, सदर्व सानवी देशमुख की तरफ से।
0: और साथ ही साथ अगली फरमाइश आई है मेरठ कैंट से। दिग्दर्शन कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई की तरफ से।
1: वहीं कलानौर से आई है नरेंद्र, किरण, नितिन और मयंक शर्मा की तरफ से।
0: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल की तरफ से।
1: दोस्तों आप भी अपनी फरमाइश हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9413329359 पर।
0: और भी फरमाइश बिल्कुल हमारे इस पिटारे में है, जो कि है धमदा ग्राम सुखरी कल्ला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल की तरफ से। आप और मिलकर एंजॉय करते हैं इनकी फरमाइश का ये बेहतरीन जगाना।

0: लाइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले मैं तो पहले अरे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टर्क
0: कम ऑन रिया
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: मेरी भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग टू यू,
1: दिन में नजरे इनकी इधर उधर।
0: आई एम नॉट लिसनिंग टू यू,
1: जिंदगी नहीं चल।
0: ओके, आई एम नॉट विद हर।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।
2: ओके, दैट्स इट। फिलहाल के लिए प्रोग्राम में को एंजॉय कर रहे हैं आप इस वक्त इस आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल, और बात कर लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की। भैया, ये जो इसकी जो पॉइंट टेबल्स की जो शीट है ना, वो फिलहाल कुछ इस तरीके से कन्फ्यूजिंग हो चुके हैं जैसे हमारे मैथमेटिक्स में जो टिक्नोमेट्री की जो पॉइंट शीट आती थी ना, कि भैया समझ ही नहीं आ रहा, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। सब लोग जो है वो प्लेऑफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पॉइंट टेबल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन जो है वो उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। लेकिन मुश्किल का सामना करते करते आरसीबी ने जो है वो सबसे पहले क्वालिफाई कर लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अभी तक 13 मैच खेले, 9 जीते हैं, सिर्फ 4 ही मैच में हार मिली है। रन रेट भी बढ़िया है साहब, +1.065 की रन रेट से आगे चल रहे हैं। और दो जो टीमें हैं सबसे निचले पायदान पर है, उसमें LSG और मुंबई इंडियंस का नाम है जो कि एलिमिनेट हो चुकी हैं, और बची हुई 7 टीमें जो है वो प्लेऑफ में आने की जद्दोजहद में लगी हुई है। अब वो जो 3 टीमें बची कौन सी होगी, उसके लिए भैया अभी कुछ दिन और आपको IPL के मैचेस देखने पड़ेंगे, उसके बाद प्लेऑफ की रेस शुरू होगी। और बात करूँ गुजरात टाइटन्स की, तो उनका भी रास्ता बस वैसा लग रहा है कि थोड़ी सी दहलीज पर ही बैठे हैं, एक मैच जीते और भैया वो प्लेऑफ की रेस में शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद SRH, पंजाब किंग्स, CSK, RR, DC, KKR, इन सब का रास्ता जो है वो खुद की जीत पर और दूसरी जो पड़ोसी अपनी टीम है उन पर भी निर्भर करेगा कि किस तरह से वो जीते हैं। नेट रन रेट का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिलहाल के लिए युवा पसंद फरमाइश कार्यक्रम चल रहा है, और अगली फरमाइश जो है हमारे पास आई है वो आई है
3: छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखिलाल वर्मा की तरफ से। वहीं हरगोविंद नगर से आई हैं सुरेंद्र, अनिता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा और मैक्स की तरफ से।
2: साथ ही साथ पद्मा टॉकीज नीपानगर मध्य प्रदेश से फरमाइश आई है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, इनकी तरफ से आई है। और वहीं साथ ही साथ जिला मुरादाबाद ग्राम तुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आई है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप।

0: सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सैनी, मोहिनी, रितिका, बलवीर की तरफ से। और साथ ही साथ अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे तो फरमाइशों का पिटारा बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। और पार्थ रेडियो क्लब की तरफ से छत्रपति संभाजी नगर से है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश की तरफ से। आइए आप और मिलकर इंजॉय करेंगे इनकी फरमाइश का एक ही। तो और भी फरमाइश हमारे पिटारे में शामिल है, वो है
1: श्री गंगानगर की तरफ से है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की तरफ से। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: वेलकम बैक जी आपका एक बार फिर से। और खुशखबरी है जी, बड़ी खुशखबरी है, ITR 1 और ITR 4 की फाइलिंग शुरू हो चुकी है। आयकर विभाग ने FY 26 AY 27 के लिए ITR 1 और ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है, जिसमें पात्र जो करदाता हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न अब भर सकते हैं। फॉर्म आपकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे और रिटर्न दाखिले की आखिरी जो तारीख है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो रखी गई है 31st of July, यानी कि 31 जुलाई जो है वो अंतिम तारीख है। और कौन सा ITR फॉर्म लागू होगा यह आय और करदाता की उसकी जो है अपनी अपनी श्रेणी यानी कैटेगरी पर निर्भर करेगा। युवा पसंद फरमाइश प्रोग्राम चल रहा है और अगली फरमाइश हमारे साथ हमारे बीच कौन से हिसाब बता दीजिए
1: दोस्तों। अगली फरमाइश जो आई है वो है पंजाब से। क्रियांश, योगेश, ओम, गरिमा, रजत और मनीष चौधरी की तरफ से।
0: और साथ ही साथ अगली फरमाइश आई है वो आई है आपके बागवान मंजिल छोटी बलिया से। नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ आरजू बागवान और बागवान फैमिली के सभी सदस्यों की तरफ से।
1: वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आई है प्रमिला, हेमा और अंधरा सिंह की तरफ से। वहीं शनि चक्र से आई है दुर्गा कुमारी और राधिका कुमारी की तरफ से।
0: सदर बाजार कुरावली से है अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और साथ ही साथ सोनम वर्मा और इनके पूरे परिवार वालों की तरफ से फरमाइश है। और अगली फरमाइश की मैं बात करूँ तो वो है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो की तरफ से। आप और मिलकर एंजॉय करते हैं इनकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा म्यूजिकल गाना।

0: जी बिल्कुल, प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त आप एंजॉय कर रहे थे इन आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और मेरे साथ
1: आपके एडो साथी प्रिया अग्रवाल। दोस्तों आज की शुरू की महफिल को बस यहीं पे विराम कहते हैं और हम मिलेंगे आपसे एक नए दिन में एक नई शाम में।
0: आज के प्रोग्राम का संयोजन रहा, संयोजन और प्रस्तुति रही राजेश लामरोड की, कंसोल पे हमारे साथ मुस्कान, और हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ज्ञानवाणी, यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार का रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरीटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
1: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में

0: की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटिव चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

हेलो हाय गुड इवनिंग, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त राधिका राठी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर, जिसमें हम बातें करेंगे बहुत सारी और सुनेंगे प्यारे प्यारे म्यूजिकल ट्रैक। तो करते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और धूप इतनी तेज कि फोन पे बोलने लगता है कि भाई मुझे भी थोड़ी एसी दिखा दो। लेकिन सच बताऊं, गर्मी सिर्फ पसीने और हीट का नाम नहीं होता। ये सीज़न है आम, कुल्फ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, इवनिंग वॉक और वैकेशन वाइब भी लेकर आता है। तो आज हम बात करेंगे समर केयर, हेल्थ टिप्स या मूड फ्रेश रखने के आइडियाज़ की और सुनेंगे प्यारे प्यारे म्यूजिकल ट्रैक्स।

दोस्तों, गर्मी के सीजन में सबसे जरूरी चीज होती है हाइड्रेशन। जी हाँ, हम अक्सर बिजी रूटीन में पानी पीना ही भूल जाते हैं और उससे फिर हेडेक, वीकनेस और इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि समर में नॉर्मल डेज से ज़्यादा वाटर इंटेक ज़रूरी होता है। इसके साथ ही आप नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और सीजनल फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन या कुकुम्बर बॉडी को नेचुरली कूल रखते हैं। तो एक ज़रूरी बात, खाली पेट कभी बाहर मत निकलिए। तेज़ धूप में बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इस समर सिर्फ फ़ोन को ही चार्ज मत करते रहिए, खुद को भी हाइड्रेट रखिए।

हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर में। मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो दोस्त राधिका राठी। दोस्तों, गर्मी का सीज़न आते ही एक और चिंता शुरू हो जाती है, टैनिंग और स्किन प्रॉब्लम्स। कभी फेस डल लगता है तो कभी स्किन ड्राई हो जाती है। तो अगर आप दोपहर में कहीं बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें, कॉटन क्लोथ्स पहनें, सनग्लासेस लगाना ज़रूर भूल याद रखें, और डायरेक्टली हार्श सनलाइट अवॉइड करें। और गर्ल्स, सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही ज़रूरी नहीं होते, कभी कभी घर का

सिंपल रोज़ वाटर और एलोवेरा भी मैजिक कर देता है। वैसे भी असली ग्लो तो तब आता है जब मूड हैप्पी हो। तो स्ट्रेस कम करिए और समर को एंजॉय करिए।

0: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ,
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग इन करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों एक बात बताइए, समर सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? नानी का घर या मैंगो शेक, आइसक्रीम या फिर बचपन की समर वेकेशंस। सच में बचपन की गर्मियाँ अलग ही होती थी, ना इतनी चिंता ना इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बस कार्टून्स आम और शाम को क्रिकेट। कभी कभी लाइफ में बिजी होते होते हम छोटी छोटी हैप्पीनेस एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। तो इस समर एक काम करिए, थोड़ा वक्त खुद को दीजिए, सनसेट देखिए, फैमिली के साथ डिनर करिए या बस फेवरेट सॉन्ग लगाकर रिलैक्स करिए, क्योंकि लाइफ के असली कूलनेस एसी में नहीं, मोमेंट्स में होती है।

दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि गर्मी का मौसम हमें एक सीख भी देता है? जैसे हर तेज धूप के बाद शाम को ठंडी हवा जरूर आती है, वैसे ही लाइफ में डिफिकल्ट फेज के बाद सुकून भी आता है। कभी-कभी हम सिचुएशन से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि लगता है सब कुछ रुक गया है, लेकिन नेचर हमें रोज सिखाती है कि बदलाव नियमित है। तो अगर लाइफ थोड़ी हैवी लग रही है तो चिंता मत कीजिए, खुद पर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट लोग तो वही होते हैं जो डिफिकल्ट वेदर में भी स्माइल करना नहीं छोड़ते।

दोस्तों, गर्मी का सीज़न हो और ठंडी ठंडी चीज़ों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? समर का असली मोड तब बनता है जब सामने हो कुल्फी, आइसक्रीम या फिर एक ग्लास चिल्ड मैंगो शेक। और ऑनेस्टली, कभी कभी फेवरेट फूड भी मूड थेरेपी का काम कर देता है। वैसे राजस्थान की गर्मियों में छाछ और लस्सी का अलग ही लेवल का प्यार होता है। एक ग्लास ठंडी लस्सी और आधी टेंशन तो वैसे ही गायब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बाहर का अनहेल्दी फूड थोड़ा कंट्रोल में खाइए और घर का लाइट फूड ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि हेल्थ भी कूल रहनी चाहिए और मूड भी। तो आज घर जाते वक्त खुद को कोई फेवरेट समर ट्रीट ज़रूर दीजिए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ ही दिन स्पेशल बना देती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वैसे इस समर में फोन भी ओवरहीट हो जाते हैं, मतलब इंसान और मोबाइल दोनों का पेशेंस एक साथ टेस्ट होता है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज अच्छी होती है, समर हमें छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू सिखा देता है, जैसे ठंडी हवा, पानी या बिजली की इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों, गर्मी को सिर्फ कंप्लेन मत कीजिए, थोड़ा एंजॉय भी कीजिए।
2: कटारी

0: हमारे साथ।
1: I don't owe you any explanation. हमारा ब्रेकअप हो चुका है, रिमेम्बर?
0: ब्रेकअप? अभी तीन दिन पहले तक तो तुम मुझे बड़े सेंटी एसएमएस भेज रही थी, आई मिस यू वाले।
1: तुमने रिप्लाई किया? नहीं ना, बस आई गॉट ओवर यू।
0: गॉट ओवर यू? तीन दिन में गॉट ओवर यू?
1: सी, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है, वी आर फ्री, सो लेट्स जस्ट एंजॉय आवरसेल्व्स, ओके?
2: रिया, कम, लेट्स दिस।
1: कम ऑन।
2: रिया, नाम भी बदल लिया?
0: भाई साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? जेल सिंह भाई साहब, जेल सिंह आओ ना, लोनली लोनली करो।
3: हाँ, चाहत बड़े मेरी महंगी पड़ेगी, ना गिन सर यारा जब जब लड़ेगी, जी ना सकोगे तुम मर ना सकोगे।
4: तो दोस्तों, इस गर्मी पानी पीते रहिए, हेल्थ ध्यान रखिए और अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रहिए, क्योंकि समर हो या लाइफ, दोनों तभी ब्यूटीफुल लगते हैं जब हम खुद को खुश रखते हैं। तो मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त राधिका राठी, लेते हूँ आपसे इजाजत। सुनते रहिए एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम सन सिटी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से रिले कार्यक्रम।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। सबसे पहले सुनिए देशभक्ति गीत, जिसे हमने लिया है कर्मा फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभी आपने कर्मा फिल्म का गीत सुना। लीजिए सुनिए भारतीय सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
2: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

कयामत से कयामत लीजिए सुनिए इस फिल्म में अलका याग्निक और उदित नारायण को आनंद विलर ने धुन बनाई है और वो लिखे हैं बजरंग सुल्तानपुरी ने।

तक अभी आपने इस फिल्म में अलका याग्निक और उदित नारायण को सुना। लीजिए सुनिए हेमलता और शैलेंद्र को फिल्म है अखियों के झरोखों से। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म हीरा पन्ना में सुना। धुन बनाई थी आदि बर्मन ने, गीतकार थे आनंद बख्शी। अगला गीत अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ प्रेम गीत फिल्म से। संगीत तैयार किया है जगजीत सिंह ने, बोल लिखे हैं इंदिवर ने।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जयमाला कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे फौजी भाइयों का स्वागत है। लीजिए सुनिए कुर्बानी फिल्म में आशा भोसले और मोहम्मद रफी को बोल लिखे हैं इंदेवर ने संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

जयमाला कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश और कंचन को फिल्म है धर्मात्मा। इंदिवर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: स्मृतियों के स्वर। स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी के भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री लवेश कुमार परमार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। स्मृतियों के स्वर इस श्रृंखला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष इस उपलक्ष में दोस्तों हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनकी दुनिया में रेडियो था, या यूं कहें कि रेडियो ही उनकी दुनिया थी, या उन्होंने अपनी पूरी जो दुनिया है, अपना जो पूरा समय है वो रेडियो को ही दे दिया। तो आज भी हमारे ठीक सामने एक ऐसी ही शख्सियत बैठी है जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिन्होंने बरसों बरस रेडियो में काम किया और अपने आप को यूं कहें कि खपा दिया रेडियो की दुनिया में। आप हैं सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी आदरणीय लवेश परमार साहब। सर, आपका विविध भारती के इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सुनने वाले सभी साथियों को जो दूर दूर तक हमारी बात सुन रहे हैं
1: जी,
2: उन सबको मैं नमन करता हूँ और बड़ों को तो मैं पांव धो करता हूँ
1: जी,
2: और दूसरों जो मेरे साथी हैं उनको बहुत प्यार और बच्चों को स्नेह ही स्नेह। इस बात में मैं एक चीज कहूंगा आपको, यहाँ पे जो हमारा कार्यक्रम रहता था ना
1: जी
2: पहले, जहाँ आपने शुरुआत की कि भाई आप वास्तव में खप से गए, वैसे मेरी पूरी जिंदगी है ना इसी में खप गई है एक तरह से
1: जी, हमें पता है
2: और उससे बाहर अभी तक मैं निकल नहीं पाया हूँ। मैं सही बात बताऊँ
1: जी, जी।
2: बहुत अच्छा लगता है और आज तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई संसार के उस जगह में बैठा हूँ जहाँ सब कुछ देखा जा सकता है।
1: बिल्कुल। तो सर, हम तो ये कहेंगे कि आपने न जाने कितने इंटरव्यू लिए हैं अपने इस पूरे कार्यकाल में, और आज आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसा है ये एहसास?
2: ये एहसास तो बड़ा एक अनुभव दे रहा है मेरे को
1: जी।
2: वह अनुभव जो मैंने हमेशा इंटरव्यू लेते समय बोला, तो उसमें मुझे सामने वाले को क्या क्या पूछना, कैसे बातचीत करना, और विशेष तौर से आकाशवाणी के माध्यम से हमेशा मेरी एक ही ध्यान रहता था कि हमारा जो सुनने वाला भाई उसको लाभ कैसे मिले।
1: बिल्कुल।
2: उसको अगर लाभ नहीं मिलता मेरी बात से तो कोई फायदा नहीं मेरे इंटरव्यू लेने का। और हमेशा जब ये बात ध्यान रखता तो सुनने वाले अवश्य

0: कहा करते हैं उनके पत्ते तो हजारों लाखों की संख्या में आते थे।
1: बिल्कुल।
0: मैं बताऊं आपको, जोधपुर और बीकानेर में तो ये पत्रों की भरमार हो जाती थी, आपको तो मालूम ही है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये पत्र इस संख्या में आते थे कि कई बार तो संभालने मुश्किल हो जाते थे। और इसका कारण ये था कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और स्वागत है आप सब लोगों का जो इस प्रोग्राम को अपने इतना धैर्य से और प्यार से सुनते हैं।
1: जी।
0: कोई कहता आज भी ना कि भाई ये प्रोग्राम आकाशवाणी कौन सुनता है।
1: हाँ,
0: बड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हमसे कहा मैं बताऊं, देखो आकाशवाणी के अंदर सुनना, उन बुजुर्गों से पूछो जो हमेशा रामायण का पाठ सुनते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: है?
1: बिल्कुल।
0: रामायण का पाठ का समय तय है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी में, जैसी कड़ी अगर आगे पीछे हुई उनको फोन आ जाता है स्टूडियो में।
1: और समय एक मिनट भी ऊपर नीचे हुआ नहीं तो शिकायती पत्र आ जाते थे।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही।
1: आज भी श्रोता सुबह से लेकर रात तक आकाशवाणी सुनते हैं और बराबर हमें बताते हैं कि सुबह 5:20 से शुरू होता है हमारा रेडियो, जो रात के 11 बजे ही बंद होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और भूले बिसरे गीतों का तो फिर कहना ही क्या, आप लोग जो प्रस्तुत करते हैं बड़ा अनोखा, एक प्रोग्राम बड़ा अनोखा है विद भारती का तो। और ये जो 90 साल की पूर्ण होने पर जो आपने श्रृंखला शुरू की है, इसकी तो बात ही अलग है, निराली है।
1: बिल्कुल। तो परमार साहब, हम और हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि आपने रेडियो में इतने सारे साल बिता दिए, पर रेडियो में आना हुआ कैसे आपका?
0: बचपन में मैं पिताजी से लड़ लड़ा के एक प्रोग्राम के लिए विशेष तौर से मैं ट्रांजिस्टर खरीदना चाह रहा था, बाहर का विदेश का ट्रांजिस्टर था। तो पिताजी बड़े नाराज हुए, अरे क्या विदेशों का ट्रांजिस्टर खरीदते, हमारा हिन्दुस्तान में ट्रांजिस्टर नहीं मिलते हैं क्या? नहीं नहीं बाबू जी, मेरे को इसके अंदर ना जरा मजा आता था। तो हम पहले जयपुर में थे, जो मैंने सारी स्टडी जयपुर में की, और जयपुर से फिर जब हम बीकानेर आए तो मैंने बाबूजी से जब ये चीज कहा, बाबूजी हम पिताजी को कहते हैं, तो बाबूजी से जब मैंने कहा कि नहीं मेरे को तो ट्रांजिस्टर चाहिए और ये वाला इसी कंपनी का ट्रांजिस्टर चाहिए, तो ले ले बेटे जा। वो ट्रांजिस्टर मेरे कई सालों तक साथ में रहा। और वो ट्रांजिस्टर लेके मैं ये सोचा करता था काश मेरी भी आवाज भाइयों के पास तक पहुंचे और मैं वो चीज उनसे कह सकूंगा जिससे उनका जीवन एक वो जीवन बन जाए जो वास्तव में वो चाहते हैं।
1: जी।
0: जीवन अमृत की तरह बन जाए।
1: जी।
0: और वो भी किसी दूसरे लोगों के लिए कुछ न कुछ करे, मैं हमेशा यही चाहता था, इसलिए मैं आकाशवाणी में आया, सही बहाना में।
1: जी जी, बहुत अच्छा लगा आपकी ये जो विचारधारा है रेडियो के प्रति, आकाशवाणी के प्रति।
0: मैडम पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ था मेरा, बैंक में भी सिलेक्शन हुआ था,
1: लेकिन आपने रेडियो को चुना।
0: रेडियो को चुना मैंने।
1: तो आपसे बातें तो सर हमारी हो ही रही हैं, हम आपकी पसंद का एक गीत भी यहाँ जानना चाहेंगे, कोई गीत सुनना चाहें आप तो बताइए।
0: एक तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
1: क्या
0: सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है।
1: जी।
0: मुझे तो गर्व है इस हिंदुस्तान पे अपने, सही कहता हूँ।
1: बहुत सुंदर। तो ये फिल्म भाई बहन का गीत है, सारे जहां से अच्छा, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मैंने खुद आपको काम करते देखा है और बहुत साल आपके साथ काम किया है राजस्थान में। जो लगन, जो जुनून मैंने आपके अंदर देखा, जब पहले हमारे आकाशवाणी में टेप्स हुआ करते थे, रिकॉर्ड्स का जमाना था, आप पूरे पूरे कार्यक्रम टेप में रिकॉर्ड करते थे, हम लोग पूरे कार्यक्रम टेप में बनाया करते थे, और कार्यक्रम बनाते बनाते कई बार टेप का फीता जो है वो टूट जाता था या आपस में उलझ जाता था और हम उसे सुलझाने में लग जाते थे। कई बार कार्यक्रम खराब हो जाता था, पूरे पूरे कार्यक्रम एक छोटी सी गलती होने पर दोबारा बनाए जाते थे। ये सब मैंने आपको करते हुए देखा है कि आप एक छोटी सी गलती पर फिर से पूरे के पूरे कार्यक्रम को बनाए करते थे। ये जो आपका अनुभव है, वो जो परिस्थितियां थी आकाशवाणी की दुनिया में, आज हम एक नए युग में आ गए हैं जहां कंप्यूटर है और एक क्लिक में सारा काम हो जाता है, इस अनुभव को आप कैसे साझा करेंगे?
1: देखिए मैडम, शुरुआत में जो आपने बात बताई ना टेपों वाला
0: जी,
1: तो टेपों में उस समय मैं जेब में कैंची रखा करता था हमेशा
0: जी,
1: और वो कैंची से इस जगह से इस प्रकार काटता था
0: जी,
1: शब्द से शब्द जुड़ जाता था। पहले तो ये करता है, बिल्कुल शब्द अर्थविहीन हो जा रहा है तो फिर पूरा प्रोग्राम वापस बनाता था। और मेरे मिसेज हमेशा कहती, तुम घर पे रहते हो या नहीं रहते हो? बहुत लेट जाता था घर पे, क्योंकि डबिंग एडिटिंग स्टूडियो में सबसे ज्यादा काम पड़ता।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरी बात, मेरे दूसरे साथी थे परमार साहब, तो हमेशा स्टूडियो में पड़े रहते हैं ये कहते थे इनके तो नाम से स्टूडियो कर दो एक बस क्योंकि मेरा काम से बड़ा लगाव था, जुनून था मेरा, एक जुनून। जुनून ऐसा था कि मैं भुलाए नहीं भूल सकता, आज भी नहीं भूल पाता। ये बात है मैडम।
0: तो वो किस तरह से, आपको पता है कि जब आप कैंची रखते थे और टेपों को चिपकाया करते थे और फिर पूरा का पूरा कार्यक्रम बनाते थे, पूरा समय देते थे, और फिर जब एक नया युग आया जहां पर एक कंप्यूटर हमारे सामने आ गया, हमें एडिट करना है तो बस एक सेकंड में हम उस चीज को एडिट कर देते हैं।
1: वो मैंने यहाँ जब मेरा ट्रांसफर बॉम्बे हुआ और मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मेन स्टेशन पे काम किया, और मेन स्टेशन जो बॉम्बे का है वहां पर जब संवादिता चैनल था, संवादिता चैनल पे जो मैंने हिंदी का बहुत बड़ा चैनल था, सर तरह के प्रोग्राम करते थे उसके अंदर हम, और उसी के तहत जब हम एडिटिंग की जब बात कर रहे हैं आप, वो तो सेकंडों का काम हो गया। जहां घंटों का काम होता था वो सेकंडों का काम हो गया। और रही दूसरी बात कि वहां पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर नया आता था, मुझे बड़ा शौक था सॉफ्टवेयर के काम को सीखना
0: जी,
1: सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है उसकी पूरी नब्ज पकड़ लेता था। और इस प्रकार मैंने एक जर्मन से हमारे लिए सॉफ्टवेयर आया था प्रोडक्शन के लिए, उसको मैंने पूरा सीखा ए टू जेड। और यहाँ तक कि इंजीनियर लोग, भाई लोग मेरे साथ में खड़े रहते थे बेचारे, आधा आधा एक एक घंटे तक, परमार साहब आप बताइए मुझे क्या चीज सीखना चाहते हैं इसमें, कैसे डबिंग एडिटिंग वगैरह मिक्सिंग वगैरह कुछ और चाहते हो? मैंने उनको सब चीजें बताई और इस तरह से मेरा नाम दिल्ली तक उन्होंने पहुंचा दिया कि ये एक आदमी ऐसा है जो कि नया सॉफ्टवेयर को जुनून के कारण सीख गया
0: जी,
1: जबकि इसको आना जाना कुछ भी नहीं था, जुनून होता नहीं काम करने का, जुनून के कारण मैंने बहुत चीजें सीखी।
0: तो रेडियो की दुनिया में उद्घोषक की पहचान बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि वो माइक पर होता है। हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे, आज आपको सुन रहे हैं, कि कार्यक्रम अधिशासी ये जो पोस्ट है ये क्या काम करती है? जो उद्घोषक के पीछे की दुनिया है, जो माइक के पीछे की दुनिया है, वहां पर कार्यक्रम अधिशासी का क्या काम होता है और किस तरह से वो अपने काम को अंजाम देते हैं, आप बताइए थोड़ा, ताकि हमारे श्रोता जाने।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पता नहीं कहां कहां से आप प्रश्न उठा के लेकर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने कार्यक्रम अधिशासी की बात किया
0: जी,
1: इसके अंदर जो चीजें आती थी वो चीजें मैं हमेशा, जो मेरा अनुभव था मेरी जिंदगी का, जहां जहां मैंने गलतियां की थी वो गलतियां मेरे साथी लोग नहीं करे, बस वो चीज में जाता था।

0: वो मैं उनको बताता था, भाई देखो बोलते समय यहाँ पर आप इस प्रकार बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर आप इस प्रकार करके अगर दूसरी बातों को जोड़ेंगे तो भी अच्छा रहेगा। आप केवल मात्र मैं जो बता रहा हूं आपको, कोशिश कीजिए कि इन गलतियों को आप ना करें। मैंने तो करके सीख लिया, उनको सुधार लिया। जैसे कि कई बार उच्चारण के अंदर है, हम आनंद सिंह जी करके हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बहुत चीजें सिखाई मेरे को। डबिंग एडिटिंग में मेरे शुरुआत के अंदर भी लाइव हम प्रोग्राम देते थे सूरतगढ़ के अंदर
1: जी,
0: सूरतगढ़ गंगानगर के पास पड़ता है
1: बिल्कुल
0: राजस्थान में, तो वहाँ लाइव प्रोग्राम देते थे हम। तो लाइव प्रोग्राम में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता
1: जी।
0: है, इतना ध्यान मंदाकिनी जी आप तो अच्छी तरह मालूम है क्योंकि आप तो लाइव हमेशा ही बैठते हैं, आज भी बैठते हैं
1: जी।
0: तो इतना ध्यान देते थे। तो वहाँ पर तो हमें चाचा करके थे एक हमारे साथ में।

0: इतना ध्यान देते थे तो वहां पर तो चाचा करके थे एक हमारे साथ में बुजुर्ग आदमी, तो उनके साथ हम लोग प्रोग्राम देते, तो उन्होंने जो चीजें सीखी मेरे को आज भी याद है। वो चलते प्रोग्राम में वो लपड़ मार देते थे हमारे, अरे तूने गलती कर दी है यहाँ पे, और फिर उसको इससे प्यार से उसको समेट लेते थे,
1: जी
0: गलती तो कर दी है, गलती करके देख इसको सुधारा कैसे जाता है मैं बताता हूँ, इसको ऐसे सुधार लो बात को। तो वो मेरे को लपड़ मार के हल्के से गाल पे ऐसे करके, अरे कैसा लगा कैसा लगा, अच्छा लगा ना, एक दादा अपने पोते को कैसे प्यार करता है, कैसे
1: ये लाइवनेस में एक बहुत बड़ी चीज,
0: ये लाइव प्रोग्राम वो देते थे। और इस प्रकार अमित साहब थे, वो उनकी बातें बहुत मेरा लिए।
2: ये था आकाशवाणी के भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले सोमवार। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
3: स्मृतियों के स्वर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आज के हवा महल में प्रस्तुत है झलकी, ये भी खूब रही। लेखक उर्मिला मिश्रा, निर्देशक चंद्र प्रभा भटनागर।

0: अरे इतनी जल्दी हुआ है दोस्त के घर?
1: मैं तो तुमसे कहकर गया था कि फटाफट लौट कर आता हूँ। तुम्हारी याददाश्त का इस उम्र में ये हाल है, तो हमारी अम्मा की उम्र तक पहुँचोगी तब क्या होगा?
0: होगा वही जो होना होगा। जब कुछ और नहीं बोलने को तो लगे मेरा मजाक बनाने। जरा बताओ तो तुमने मुझे कब कहा था जल्दी आने को?
1: हे भगवान, इसका मतलब तुम्हें दूसरी बात भी नहीं याद होगी। क्यों
0: दूसरी बात? ये दूसरी बात कौन सी है? मैं कहती हूँ अगर दोबारा ही कह दोगे तो कौन सा आसमान फट पड़ेगा। आखिर इंसान हूँ, भूल गई होंगी।
1: अब आई ना रास्ते पर। यही तो मैं चाहता था कि अपनी गलती मानो, वरना तुम औरतें बोले चली जाओगी, घंटों बहस करोगी पर अपनी गलती नहीं मानोगी।
0: अरे बाबा अब तो मान ली ना गलती, अब तो बोलो ना।
1: फटाफट तैयार हो जाओ, गुप्ता जी के घर जाना है।
0: उनके बेटे की बर्थडे पार्टी में।
1: जी हाँ, वही जाना है। पार्टी तो बस कहने की बात है, यूँ समझ लो हम तुम उनके खास लोगों में है।
0: सो तो है।
1: हाँ, लेकिन ये सोच कर चलो कि पार्टी में नहीं डिनर में जाना है। अरे 6 बजे का समय और 5:15 बज चुके हैं।
0: अरे लेकिन लेकिन क्या खाली हाथ जाऊंगी? मैंने तो कुछ मंगवाया भी नहीं।
1: कुछ मंगवाया भी नहीं, बस हिला दी 2 टके की जबान। हे भगवान, पत्नी मिले तो पत्नी जैसी, नहीं तो।
0: नहीं तो क्या? जरा फिर से तो कहो।
1: क्या कहूँ, अजी लानत है अपनी अक्ल की। दुनिया भर की बीमारियों का इलाज करता हूँ किताब पढ़ पढ़ कर, और तुम्हारे भुलक्कड़पने के इलाज की याद नहीं रहती। ठीक है, हंस लो। जब ओखली में सर डाला तो मूसलों से क्या डरना। जाता हूँ पर कहाँ जाऊँ, क्या अकल हूँ, अरे कितने अकल हूँ।
0: अरे वैसे तो बड़े अकल वाले बनते हो और इतनी जरा सी बात मुझसे पूछते हो। जैसी रकम हो जेब में और जिस डिग्री के दोस्त हो वैसा ही प्रेजेंट ले आओ। लेकिन हाँ, अगर मेरी बात मानो तो ये प्रेजेंट प्रेजेंट का चक्कर रहने दो। बढ़िया से लिफाफे में रख कर पूरे 5 रुपए का नोट दे दो।
1: क्यों नहीं, बड़ा खूबसूरत लगेगा ना। अजी डॉक्टर का बेटा है, तुम्हारे नौकर का नहीं, आखिर अपनी भी तो कुछ इज्जत है।
0: अजी तो कौन मना करता है, जाइए जाइए, जितना जी चाहे लुटा आइए। यहाँ मैं महीने भर से एक जोड़ी चप्पल के लिए रिया रही हूँ, इस पर ये महीने का आखिर, कहाँ से लाऊं रोज रोज लोगों को देने के लिए बर्थडे प्रेजेंट। अच्छा धंधा बना लिया है लोगों ने, जितना खिलाते पिलाते नहीं उससे चौगना तो वसूल कर लेते हैं।
1: और जब अपने छटूले की हैप्पी बर्थडे मनाती हो

0: मेरा तो एक ही है, साल में एक ही बार तो लेती हूँ सबसे,
1: लेकिन यहाँ तो लोगों के चार चार छह छह हैं। अगले महीने फिर तैयार रहना गुप्ता जी के घर कुछ देने को। अजी तुम लोगों का क्या, ये तो हमारे दिल से पूछो कि कितनी महंगी पड़ती है दूसरों की खुशियाँ।
2: लेकिन पहुँचने के बाद तो खूब खीसे बघार कर कहती हो हैप्पी बर्थडे।
0: वो तो एक्टिंग करती हूँ, कोई मेरे दिल से पूछे। अजी तुम क्या जानो, ज्यादातर लोग ऐसी ही छोटी खुशी दिखाते हैं। भूल गए उस दिन मिसेस कटारा कैसे कह रही थी, जाने कहां से चल गया है हैप्पी बर्थडे का चलन, मुए अंग्रेज चले गए पर अपने मूंछ के बाल यही छोड़ गए इस अंग्रेजियत के रूप में।
2: लेकिन मानो या न मानो, ये अंग्रेजियत का भूत तुम औरतों पर ही सबसे ज्यादा चढ़ा है। अंग्रेजी की ABCD नहीं लिख पाएंगी, लेकिन हैप्पी बर्थडे जरूर गाएंगी। अरे ये भी कोई तरीका है कि जन्मदिन जैसे शुभ दिन पर जलती ज्योति बुझाई जाए।
0: अब बाजार भी जाओगे या यहीं खड़े खड़े भाषण देते रहोगे?
2: जाता हूँ, लेकिन अब तो देर हो ही गई, थोड़ी देर और सही। हाँ तो मैं कह रहा था कि हमारी अम्मा।
1: अरे बस बस, हमारी अम्मा, हमारी अम्मा, अजी उनके गुणगान बाद में गा लेना। हाँ? पहले
2: साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हमारी अम्मा की तारीफ तुम्हें सुहाती नहीं, उनकी बराबरी कर लेना तब कहना।
0: मुझे नहीं करनी उनकी बराबरी।
2: हाय क्या धूमधाम से मनाती थी वो हमारी सालगिरह। नए कपड़े, माथे पर तिलक, मंगलदीप, पूजा पाठ, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे हम लोग। आजकल के बच्चों की तरह माँ बाप से तय नहीं करते थे कि अब की बर्थडे पर ये देना वो देना।
0: ओहो, मुझे तो लगता है आज तुम ऑफिस से भांग खा कर आए हो, अभी तो इतनी जल्दी थी और अब।
2: हाँ हाँ, अब क्या, हमारी अम्मा की बात। हाय हाय, ढोलक मजीरे के साथ जो गीत होते थे वो तुम क्या जानो। अम्मा का एक गाना तो अभी तक याद है, क्या कहते, हाँ लाल झुलई हाँ लाल कपल नारे झुलई लाल।
0: अभी झुलई हो लाल को बाद में गाना, और तुम भी बाद में झूला झूलना। मैं कहती हूँ पहले बाजार पे जाओ।
2: जाता हूँ, अभी गया, बस ये गया और ये आया।
0: हाँ, ये गया और ये आया। अजीब प्रेजेंट लेने जा रहे हो या हरी धनिया की गड्डी? अब देर तो हो ही गई है, ठोक बचा कर पैसे खर्च करना, पैसा फालतू का नहीं है।
2: ओहो, अरे अब जाने तो दो।
0: एक बात तो रही गई।
2: क्या?
0: तुम्हारा हाल तो मैं जानती ही हूँ, ऐसे ही बस पैकेट लेके चले आओगे, जरा रंगीन कागज में बंधवा कर लाना।
2: अच्छा भाई ठीक है।
0: ठीक तो है, मगर सुनो, वो एक चिट पर कुछ छपा रहता है मुआ अंग्रेजी में, वो भी लगवाए लाना पैकेट पर, समझ गए ना?
2: ओ, ज्यादा समझाओगी तो मुझे चक्कर आ जाएगा, अब जाने भी दो।
0: अरे तू जाओ ना, कौन रोके है तुम्हें, बस जरा सी मेरी एक बात सुनते जाओ।
2: अभी क्या कुछ और बाकी रह गया है सुनाने को?
0: देखो जी, जल्दी जल्दी मत जाना, सड़क पर बड़ी भीड़ रहती है, देर तो हो ही गई है। बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जितनी देर में पहुँचेंगे उतने ही इत्मीनान से बैठकर खाएंगे।
2: क्यों नहीं, तुम्हें तो कोई और काम है ही नहीं, और भी कोई फिक्र है सवाए खाने के? अच्छा तो मैं जाऊँ?
0: जाओ ना। आइए बैठिए, आज इधर कैसे?
3: जी हाँ वो तो कल है, अरे तो क्या हुआ, अरे आइए अंदर आइए।
2: जी अंदर नहीं, आप तो यही बाहर रहने दीजिए, अब जाने भी दीजिए, देर हो जाएगी।
0: हाँ।
2: हमें दूर जाना है ना।
4: हाँ, हाँ। कल तो आना ही है, आएंगे ना?
3: अरे क्यों नहीं भाई, कल तो आना है।
2: हाँ, हाँ, हाँ, जरूर आएंगे बेटे। अच्छा अब चले।
0: लो अब क्या होगा?
2: होगा क्या, कल फिर आना होगा, आना ही नहीं कुछ प्रेजेंट भी लाना होगा।
0: प्रेजेंट तो आज दे तो चुके।
2: लेकिन लोग, तुम्हारी सहेलियां सब क्या कहेंगे, उनके दिखाने के लिए तो।
0: हे भगवान, कैसा मन हो उस दिन था आज का।
2: अरे भाई अब चलोगी भी, यहाँ तो तुम्हारे भूख के पेट में चूहे उचक रहे हैं।
0: हाय हाय, मेरा दोसे का घोल होता तो दोसे बन जाते, खा रही होंगी वे दोनों चटखारे मार मार।
2: ओहो, क्या उसके अलावा और कुछ नहीं है घर में?
0: है क्यों नहीं, लेकिन सुनो चलो मिसेस कटारा के घर चलते हैं, अभी तो दोसे बन ही रहे होंगे।
2: हाँ ये ठीक है, चलो चले।

0: किसको चाहते हैं आप?
1: मेम साहब है घर पर?
0: साहब घर पर कोई नहीं है।
2: क्या, कहाँ गए सब?
0: मेम साहब की सहेली के घर गए हैं। आज तलवार मेम साहब के साथ डोसे की दावत में।
2: डोसे की दावत में? लेकिन डोसे का घोल तो हमारे घर से लाई थी, उसका क्या हुआ?
0: अरे साहब, उसी घोल के तो डोसे खाने गए हैं वो लोग। मेम साहब को तो डोसे बनाना आता ही नहीं था, उनकी सहेली ने कहा मैं बना दूंगी, बस चले गए वहीं सब लोग।
1: लो जी, यहाँ पे सारा मामला साफ है।
2: अरे गए काम से। अरे क्या हुआ, इतने जोर से चौंकी क्यों?
1: अरे घर में गैस पर चाय का पानी चढ़ा था और गैस बंद नहीं की थी। हाय हाय, इन दोनों कमबख्तों ने तो आज मेरा कबाड़ा ही कर दिया। डोसे का घोल गया, अब देखो भगोना भी सही सलामत नहीं होगा और गैस का सिलेंडर जरूर खाली हो गया होगा। अब घर किस हालत में मिलता है?
2: ये भी खूब रही।

उर्मिला मिश्रा की लिखी झलकी आप सुन रहे थे, ये भी खूब रही। निर्देशक चंद्रप्रभा भटनागर। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: पहनी। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश सनी और शंकर महादेवन की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है शंकर शाल लॉय का, फिल्म पंगा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आपने शंकर ईशान लॉय के संगीत निर्देशन में पंगा फिल्म का गीत सुना। शंकर ईशान लॉय के संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए, आवाजें जावेद अली और हमसिका अय्यर की। फिल्म का नाम है इट्स माय लाइफ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। लीजिए सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल को। संगीत तैयार किया है विक्की प्रसाद ने, बोल गरिमा बहाल के। फिल्म का नाम टॉयलेट एक प्रेम कथा।

अब सुनिए पलाश मुच्छल के संगीत निर्देशन में पलक मुच्छल का गाया और साथ में इस गीत को गा रहे हैं पलाश भी और साथ में आतिफ असलम भी। बोल है पलक मुच्छल की फिल्म का नाम स्वीटी वेड्स एनआरआई।

मोहित चौहान के गाए इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने

0: के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से। मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
1: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2000

0: 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल

0: तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म घर में सुना। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन। अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम इज्जत।

0: छाया गीत,
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीव

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गीत आशा भोसले और सुरेश वाडकर का गाया हुआ फिल्म है परिंदा। खुर्शीद के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: विविध भारती,
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है वहां से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पर,
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: अब सुनिए एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज आशा भोसले की, फिल्म का नाम ज्वेल थीफ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रही आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: बागों में बहार
1: है। वो जो बहुत खूबसूरत है, चुलबुली है, भोली है, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: प्यार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका

1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना। अरे या या या।

0: करना आपके नाम जीते रहो। जुगनी कहती है बात की, जुगनी कहती है बात की।
1: सन 1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी जिंदगी जिंदगी रिवाज बुनियाद हीरा बॉबी जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म में पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने जो बहुत लाजवाब था।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सरिता जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गई। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीवी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मू का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को दो अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम, फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की, साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बिंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आई। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

फरीदा जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानते।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: गई।
1: ये दिल जो गमगीन हुआ था और ये नजरें भी जो खफा हो गई। चलो भूल जाते हैं वो बातें कल की।

कैसे बताएं।

मोहब्बत खिली है हमारे बीच वो कितनी है, चमचमा रहे हैं जो आसमान में गिन लो उन्हें, ये तो बस उन सितारों जितनी है।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

बोल दिए हैं अनकहे बोल, बजने लगी है मोहब्बत की सरगम, कैसा इत्तेफाक है, सज रही है उम्मीद की वादियां और बस गई हैं अरमानों की बस्तियां, ये कैसा इत्तेफाक है।

रुखसार ने मचलती जुल्फों ने उड़ा दिए हैं होश, दीवाना तो था ही ये दिल, अब है मतवाला भी और है मदहोश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कहीं तेरी मेरी बात भी आदि न है।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार और उसके बाद अंग्रेजी समाचार का रिले कुछ ही पलों में किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर

0: से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले पांच वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।